FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 8 जून वर्ष 2026। हमारी स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय प्रातः के 5:58 और 28 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ हो रही है।

0: आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर M नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। विचार बिंदु में आइए सुनते हैं समर्पण विषय पर आज के विचार।
3: स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ पैदल भ्रमण को निकले। निर्माणाधीन मंदिर के पास उनकी दृष्टि 3 मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, गधे की तरह जुटे हुए हैं, देख नहीं रहे हो? दिन भर काम करने पर थोड़ा बहुत मिल पाता है, पर इतने के लिए ठेकेदार मानो जान निकाल लेता है। स्वामी विवेकानंद ने यही प्रश्न दूसरे से किया। वो बोला, मंदिर बन रहा है, हमारी तो किस्मत में यही था कि मजदूरी करें, सो कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति ने भाव भरे हृदय से उत्तर दिया, भगवान का घर बन रहा है, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरी पसीने की बूंदें भी इसमें लग रही हैं। जो भी मिलता है उसी में मुझे खुशी है, गुजारा भी चल जाता है और प्रभु का नाम भी हुआ जा रहा है। स्वामी जी ने शिष्यों से कहा, ये अंतर है तीनों के काम करने के ढंग में। मंदिर तीनों बना रहे हैं, पर एक गधे की तरह मजदूरी में, दूसरा यंत्रवत भाग्य के नाम पर दुहाई देता हुआ और तीसरा समर्पण भाव से जुटा हुआ है। इसी समर्पण के सहारे आत्मा और परमात्मा के बीच तादात्म्य उत्पन्न होता है और अजस्र शक्ति के स्रोत का द्वार खुल जाता है। कठिन परिस्थितियों और हजारों विपत्तियों के बीच भी मनुष्य आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वस्तुतः समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों का आधार यही समर्पण है। इसके अभाव में सारी शक्तियां सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। जैसे ही समर्पण भाव जागृत होता है, अन्य शक्तियां भी उठ खड़ी होती हैं और आत्मविश्वास के सहारे असंभव समझे जाने वाले कार्य इसी समर्पण से पूरे हो जाते हैं। विराट वृक्ष की शक्ति छोटे से बीज में छुपी रहती है। यही बीज खेत में पड़कर उपयोगी खाद पानी प्राप्त करके बड़े वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी समस्त संभावनाएं और शक्तियां बीज रूप में छुपी हुई हैं, जिनको विवेक के जल से अभिसंचित कर और श्रेष्ठ विचारों की उर्वरा खाद देकर जागृत किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने अंदर की अमूल्य शक्ति और सामर्थ्य को जान लेने में सफल हो जाए तो वो सामान्य से असामान्य और असामान्य से महान हो सकता है। मनुष्यों की संगठित शक्ति यदि श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़े तो विश्व का कायाकल्प कर सकती है। शक्ति के उदित होते ही असंभव समझे जाने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं, जिनको पूर्ण होते हुए देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वैयक्तिक जीवन में भी समर्पण ही संपूर्ण सफलताओं का आधार है। विश्वास के अभाव में श्रेष्ठतम उपलब्धियों से लोग वंचित रह जाते हैं। असफलताओं का कारण है अपनी क्षमता को न पहचान पाना और अपने को अयोग्य समझना। जब तक अपने को अयोग्य, हीन, असमर्थ समझा जाएगा तब तक सौभाग्य और सफलता का द्वार बंद रहेगा।
0: विचार बिंदु में अभी आपने समर्पण विषय पर आज के विचार सुने। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ये समस्त संसार कण कण और प्रत्येक जीव में ब्रह्म का निवास है, एक से अनेक और अनेक से एक हैं। ईश्वर को बाहर पाने की इच्छा रखने से आवश्यक है कि उसे स्वयं में ढूंढा जाए। सर्व ब्रह्म की सर्वव्यापकता को वर्णित करता ये भजन आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में।

भोर होते ही कानों में मधुर बांसुरी की धुन को सुनकर ये मन धीरज कैसे रख सकता है। प्रभु कृष्णा कदंब के तरु के नीचे विराजमान होकर मुरली की धुन छेड़ रहे हैं, जिसकी मीठी ध्वनि मधुवन, वृंदावन और यमुना नदी के किनारे सुनाई दे रही है। प्रभु बांसुरी के इन मधुर धुनों से भक्तों के मन की समस्त पीड़ाएं हर लेंगे। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है चित्रा सिंह का गाया श्री कृष्ण की मधुर मुरलिया का गुणगान करता ये भजन। आइए सुनते हैं।

जिनके गुण वेद और पुराण गाते हैं, जो स्वयं भस्म रमा कर भक्तों को सुख का वरदान देते हैं, जो करुणा ममता न्योछावर कर जन जन का कल्याण करते हैं, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा धारा, तन में भस्म कंठ में सर्प, जिनके संग माता भवानी विराजमान है, कालकूट विष ग्रहण कर उद्धार करने वाले शिव शंकर का करते हैं गुणगान शर्मा बंधु के स्वरों में इस भक्ति वंदन के साथ।

हमारे श्री हरि कभी भी बाह्य आडंबरों से आकर्षित नहीं होते। जो भक्त हृदय रूपी दर्पण को पवित्र कर मोह माया को तज कर प्रभु के प्रति संपूर्ण निष्ठा और विश्वास से स्वयं को समर्पित करे, वही भक्त प्रभु के मन को भाता है।

हे शिव शंकर, आप काशी में निवास करते हैं। आप समय और स्थान से परे हैं। आप सांसारिक दुखों और जन्म मृत्यु के इस चक्र का नाश करने वाले हैं। आप अपने भक्तों का सदा भला करने वाले हैं, उन्हें सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने वाले हैं। जीवन रूपी इस भवसागर को पार कराने वाले अविनाशी शिव शंकर को हमारा कोटि कोटि प्रणाम।

अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की बात। श्रोताओं, देश और दुनिया के इतिहास में 8 जून क्यों महत्वपूर्ण है, जानने के लिए आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और आपको बताते हैं आज के इस दिन की महत्वपूर्ण खबरें। कार्यक्रम आज की बात में, जिसमें आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा। श्रोताओं, हर साल 8 जून को विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्र दिवस का विचार पहली बार वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में 8 जून को आधिकारिक रूप से विश्व समुद्र दिवस के रूप में इसे मान्यता दी। इसका उद्देश्य समुद्रों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि समुद्र केवल जलराशि नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है। वर्ष 2026 की विश्व समुद्र दिवस की थीम है रीइमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशियन, यानी पुनर्कल्पना हमारी ज्ञात दुनिया से आगे महासागर के साथ एक नया संबंध। ये थीम समुद्रों को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवनदाता और संरक्षण योग्य धरोहर के रूप में देखने का संदेश देती है। श्रोताओं, 8 जून को मनाया जाता है विश्व

ब्रेन ट्यूमर दिवस। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में जर्मनी की संस्था डॉयचे हिन ट्यूमर हिल्फ जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा की गई थी। ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि है। ये दिवस लोगों को ये समझाने का प्रयास करता है कि ब्रेन ट्यूमर का समय पर पता लगना और उपचार शुरू होना जीवन बचा सकता है। साथ ही ये मरीजों, उनके परिवारों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के योगदान को भी सम्मान देता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है और उसका स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण जीवन को

और उपचार शुरू होना जीवन बचा सकता है। साथ ही ये मरीजों, उनके परिवारों, चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के योगदान को भी सम्मान देता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्र है और उसका स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस हमें ये संदेश देता है कि जागरूकता, समय पर पहचान और उचित उपचार से अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। श्रोताओं, भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम 8 जून 1936 को बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। बाद में वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय रूप से आकाशवाणी नाम दिया गया, जो आज भी व्यापक रूप से प्रचलित है। आकाशवाणी ने स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, संगीत और समाचारों को देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी मात्र एक नाम नहीं, ये दिलों से दिलों को जोड़ने के तार हैं। आकाशवाणी साहित्य और नाट्य जगत को लोकप्रिय बनाने में भी अतुलनीय योगदान देता रहा है और हमेशा जन जन की सबसे प्रिय जानकारी उपलब्ध कराने वाली संस्था रहा है। श्रोताओ, 8 जून का ये दिन भारतीय नागरिक उड्डयन के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया ने 8 जून साल 1948 को भारत और ब्रिटेन के बीच अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की थी। इस ऐतिहासिक उड़ान ने तत्कालीन बॉम्बे से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इस पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में मालाबार प्रिंसेस नामक लॉकहीड कॉन्स्टेलेशन विमान का उपयोग किया गया था। इस उड़ान ने स्वतंत्र भारत को विश्व के विमानन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई और भारतीय विमानन के अंतर्राष्ट्रीय युग का शुभारंभ किया। श्रोताओं, ये थी आज की बात। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे बहुत खास विषय पर, और वो खास विषय है आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष जो आज संपन्न हुए हैं। आज आकाशवाणी ने तय किया है अपने 90 वर्षों का ये अद्भुत सफ़र, और इस सफ़र के कुछ विशेष बातों के साथ आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा। आप सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, कुछ आवाज़ें केवल कानों तक नहीं पहुँचती, वे दिल में उतर जाती हैं। कुछ रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बनते, वे विश्वास, अपनत्व और वर्षों के साथ बनते हैं। आकाशवाणी भी एक ऐसा ही रिश्ता है जो पिछले 90 वर्षों से करोड़ों भारतीयों के जीवन का हिस्सा बनी हुई है। ज़रा एक पल के लिए पीछे लौटिए, याद कीजिए वो समय जब घर के किसी कोने में रखा रेडियो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता था। दादा दादी समाचार सुनते थे, माता पिता गीतों का आनंद लेते थे, और बच्चे उत्सुकता से अपने मनपसंद कार्यक्रमों का इंतज़ार करते थे। रेडियो केवल एक यंत्र नहीं था, वो हर घर का एक सदस्य था जो हर दिन नई सटीक जानकारी, नई प्रेरणा और नई खुशियां लेकर आता था। 8 जून साल 1936 को जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रेडियो की ये आवाज़ आने वाले दशकों तक भारत की पहचान बन जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलनों की गूंज हो, स्वतंत्र भारत की पहली गूंज हो, युद्ध और संकट के कठिन क्षण हो, या फिर उत्सव और उपलब्धियों के सुनहरे पल, आकाशवाणी हर समय देश की आवाज़ बनी। श्रोताओं, कितनी ही पीढ़ियां इसकी आवाज़ सुनकर बड़ी हुई, कितने ही लोगों ने पहली बार कविता सुनी, पहली बार शास्त्रीय संगीत का आनंद लिया, पहली बार किसी महान लेखक की कहानी

0: सुनी। कितने ही किसानों ने खेती की सटीक जानकारी पाई, कितने ही विद्यार्थियों ने महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित किया और कितने ही लोगों ने अकेलेपन में आकाशवाणी के रूप में एक साथी पाया। और ये सिलसिला आज भी यूं ही जारी है। आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मीयता रही है। यहाँ आवाज़ें केवल प्रसारित नहीं होती, वो छू जाती हैं दिलों को। उद्घोषकों की मधुर वाणी, समाचारों की विश्वसनीयता, गीतों की मिठास और कार्यक्रमों की विविधता ने इसे जन जन का प्रिय बनाया है। समय बदला, तकनीक बदली, दुनिया डिजिटल हो गई, लेकिन आकाशवाणी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ, क्योंकि माध्यम बदल सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं बदलता। और आकाशवाणी ने 90 वर्षों तक पूर्ण विश्वास और निष्ठा से इसे निभाया है। आज हम इसके गौरवशाली 90 वर्षों का उत्सव मना रहे हैं। तब ये केवल एक संस्था की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उन अनगिनत स्मृतियों का उत्सव है जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ये उन आवाज़ों को नमन है जिन्होंने हमें जानकारी दी, प्रेरित किया, हंसाया, रुलाया और जीवन के हर पड़ाव पर हमारा साथ निभाया, और क्रमशः ये साथ जारी है। तकनीक चाहे बदली हो, लेकिन आकाशवाणी ने स्वयं को समय के अनुरूप ढाला। आज FM प्रसारण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से नई पीढ़ी तक ये पहुंच रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये सफ़र केवल एक प्रसारण संस्था की यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए आकाशवाणी के इस गौरवशाली अवसर पर हम उन सभी कलाकारों, उद्घोषकों, तकनीशियनों, पत्रकारों और कर्मियों का भी धन्यवाद करें जिनके समर्पण ने इस संस्था को जन जन का प्रिय माध्यम बनाया। इसी भावना के साथ हम आकाशवाणी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आने वाले वर्षों में भी ये ज्ञान, संस्कृति, विश्वास और जनसेवा को, अपनी परंपरा को इसी प्रकार आगे बढ़ाती रहे। और इसी के साथ एक बार पुनः आकाशवाणी को करते हैं कोटि कोटि धन्यवाद और करते हैं विविध कार्यक्रम को भी संपन्न। और फिर एक नए अंक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त प्रतिभा को अनुमति दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इंडोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इंडोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा, समुद्रीय व्यापार निवेशः, औषधीय स्वास्थ्य सेवाः, डिजिटल ऊर्जा संपर्कः, अंतरिक्षम्, शिक्षा, दूतावास संस्कृति क्षेत्रम् इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य CPA इत्यस्य भारतक्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभाया

0: उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य पञ्चदश विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन एनटीए इत्यनेन अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट यूजी पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। एनटीए इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये एबीपीएम जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारश्च सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः जेपी नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ एमओयू इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एलपीएमएस इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में एबीपीएमजेएवाई योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री

0: एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर M. नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव पर बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलेंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हम अपने देहरादून केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 1:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1301वीं कड़ी। अब से कुछ ही देर बाद यानी प्रातः 7:10 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान पाठ का 118वां भाग। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार, जिसमें आज वित्तीय साक्षरता समझें और सीखें विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इसी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगी लैंगिक समानता सुदृढ़ समाज विषय पर श्रीमती नीमा बिनवाल, सामाजिक कार्यकर्ता अल्मोड़ा से हेमलता नयाल की क्षेत्र संकलित बातचीत। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा खेती की बातें, जिसमें आज कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता और उपयोग विषय पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ताकार होंगे नवीन चंद्र बेलवाल। श्रोताओं, शाम 5:15 पर हमारे युवा साथी जोड़ेंगे कार्यक्रम युववाणी से, जिसमें आज की बात होगी विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर समुद्रों में बसा जीवन विषय पर। संध्या 5:45 पर श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम उत्तरायण, जिसमें आज विश्व समुद्र दिवस विषय पर चर्चा की जाएगी। शाम 7:00 ग्रामीण भाई जुड़ेंगे अपने कार्यक्रम ग्राम जगत से, जिसमें आज की बातें होंगी ढिंगरी मशरूम उत्पादन और लाभ विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ विषय पर चर्चा की जाएगी। प्रातः 8:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे गोपाल चंद्र जोशी का बांसुरी पर बजाया राग अल्हैया बिलावल, और पुनः शास्त्रीय संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 11:30 पर। संध्या 6:41 पर आनंद लीजिए का भक्ति संगीत का, कलाकार होंगे माधव इंगले और अनुराधा पौडवाल। श्रोताओं, लोकगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:30 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक मंजरी में, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे प्रहलाद सिंह मेहरा और नंदी आर्या के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। दिन में 2:00 कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों के कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत में, जिसमें आप सुनेंगे निर्मला आर्या के गाए कुछ लोकगीत। संध्या 5:05 पर कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम शैल स्वर में हमारे आज के कलाकार होंगे भुवन चंद्र आर्या। श्रोताओं, सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आते हैं 10:05 पर सबरंग में, दिन में 1:15 पर, रात्रि 8:00 सबरस में और पुनः रात्रि 10:00। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं 9:05 पर गीत निर्झर में, 10:35 पर सुरबहार में, 11:00 सैनिकों के लिए में एक ही फनकार का समय होगा, दिन में 2:45, अपराह्न 3:00 सुनेंगे आप सदाबहार फिल्मी गीत, शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष में और पुनः रात्रि 10:30 पर। श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ का 118वां भाग।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: अभी आपने श्री रामचरित मानस गान पाठ का 118वां भाग सुना। संगीतबद्ध किया था सतीश भाटिया ने और स्वर थे श्रीकांत पारगांवकर, रविंद्र साठे और साथियों के। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज से बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 शुरू। अभियान के तहत विशेषज्ञ जैव विविधता, वन्य जीवों और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता और राज्य में सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत 8 जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उनका संकलन करेंगे। प्रदेश के सभी 11,733 बीएलओ के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। 7 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। साथ ही प्राप्त फॉर्मो को बीएलओ ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर अपलोड भी किया जाएगा। यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ उसके घर पर 3 बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे।

0: राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से बीएलओ को सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकते हैं। वहीं बुक अ कॉल विद बीएलओ सुविधा के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ से सीधे संपर्क कर सकते हैं। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में जैव विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 का शुभारंभ किया गया। अभियान में वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, ITBP, SDRF और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। 30 सदस्यीय कोर टीम सहित पोर्टरों के साथ कुल 85 सदस्य इस अभियान का हिस्सा हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कल अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जैव विविधता, हिमालयी पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि नंदा देवी क्षेत्र विश्व की महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी धरोहरों में से एक है और इसके वैज्ञानिक अध्ययन से पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जैव विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तनों के आकलन के लिए वैज्ञानिक अभियान चलाया जाता है। इस दौरान विशेषज्ञ वन्यजीवों, वनस्पतियों, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कर आवश्यक आंकड़े एकत्र करते हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मानसून के दौरान केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और पैदल यात्रा मार्ग पर संभावित भूस्खलन की घटनाओं से निपटने के लिए प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि संवेदनशील क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात हैं तथा कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है।
1: हमारी टीमें तैनात हैं, कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। जब कहीं किसी प्रकार की किसी लैंडस्लाइड की स्थिति होती है, लोगों को आगाह करके सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। भारी बारिश का अलर्ट आता है तो एडवांस में लोगों को अवगत करा दिया जाता है। हमारे मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स पर डॉक्टर्स तैनात हैं किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए, और जो डेंजर जोन है वहाँ पर हम लोगों ने साइनेजेस और बैनर्स भी लगाए हैं लोगों को आगाह करने के लिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर कुछ लोग अनजान रास्तों पर चले जाते हैं, उन रास्तों पर बैरिकेडिंग वगैरह भी लगाई जा रही है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है।
0: प्रशासन ने यात्रियों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। पौड़ी जिले के कलजीखाल विकासखंड में हर साल आयोजित होने वाला प्रसिद्ध खैरालिंग मेला पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। 2 दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की गई।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ज्योतिर्मठ उप जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा भर्ती मरीजों के तीमारदारों से भी बातचीत की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को बाहर की दवाइयां न लिखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मरीजों को अनावश्यक रूप से अन्य अस्पतालों के लिए रेफर न किया जाए और यथासंभव उपचार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। श्री उनियाल ने ज्योतिर्मठ उप जिला चिकित्सालय में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, शौचालयों की नियमित सफाई, पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता तथा मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सर्व सेफ फूड परियोजना का विस्तार किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया और एक निजी कंपनी के संयुक्त सहयोग से संचालित इस पहल के तहत राज्य के 8 जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य प्रबंधन, अपशिष्ट निपटान और व्यावसायिक कौशल से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ विक्रेताओं के व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि सर्व सेफ फूड परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। तब से ये कार्यक्रम देश के 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जा चुका है और इसके माध्यम से 1,20,000 से अधिक स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पौड़ी गढ़वाल जिला मुख्यालय में 11 जून को विशेष आधार नामांकन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्देश्य ऐसे पात्र नागरिकों को आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनका आधार कार्ड किसी कारणवश अब तक नहीं बन पाया है। जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग के संयुक्त रूप से शिविर आयोजित कर रहा है। शिविर में आधार नामांकन के लिए 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के आवेदकों को मतदाता पहचान पत्र, ऑनलाइन CRS पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र, फोटो व बारकोड, QR कोड युक्त ऑनलाइन स्थायी निवास प्रमाण पत्र व मोबाइल नंबर साथ लाना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। पुनर्परीक्षा इस महीने की 21 तारीख को आयोजित की जाएगी। NTA के अनुसार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जुडिशियम 2.0 सम्मेलन से जुड़ी खबर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। हिंदुस्तान समाचार पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है, त्वरित न्याय के लिए सरकार तत्पर। वहीं SIR को लेकर दैनिक जागरण लिखता है, आज से SIR शुरू, BLO घर घर बांटेंगे गणना फॉर्म। नीट UG 2026 को लेकर प्रकाशित खबर में अमर उजाला लिखता है, दोबारा परीक्षा के लिए 551 शहरों की सूची जारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत आज से BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और संकलित करेंगे। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में नंदा देवी जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र अभियान 2026 शुरू। अभियान के तहत विशेषज्ञ जैव विविधता, वन्य जीवों और पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। और राज्य में सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत 8 जिलों में 1500 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, आज आकाशवाणी ने अपने गौरवशाली 90 वर्षों को बखूबी संपन्न किया है। 90 वर्षों के इस गौरवशाली सफर में भारत की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों को जीवित रखने, संरक्षित करने और जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकगीतों, लोक कथाओं, कवि सम्मेलनों, नाटकों, वार्ताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रसारण ने क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा को सुरक्षित रखने में मदद की है। इससे स्थानीय भाषाओं को एक सशक्त मंच मिला और ये भाषाएं नई पीढ़ियों तक पहुंची। इसी क्रम में लोकगीतों को संजोए रखने का उत्कृष्ट कार्य किया आकाशवाणी ने। लोकगीत केवल गीत नहीं, परंपरा, संस्कृति, अपनत्व और आत्मीयता को

वो एक माला में पिरोने वाले मोती हैं। लोक गायक इस मोती की मालाओं के सूत्रधार हैं, जो हमारी स्थानीय भाषाओं का संरक्षण करते हैं और इसे श्रोताओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में रेडियो के माध्यम से कई कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और इसी श्रृंखला से कुमाऊनी भाषा को और अधिक गरिमामय और उत्कृष्ट रूप से जन जन तक गर्व के साथ पहुंचाने के लिए इस समय आपका स्वागत है कुमाऊनी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक मंजरी में, जिसमें हमारे प्रिय लोक गायकों के स्वर लोकगीतों की मिठास आकाशवाणी के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। तो करते हैं इस सुंदर सिलसिले का आरंभ आज इस कार्यक्रम में। हम आपको सुनवा रहे हैं प्रहलाद सिंह मेहरा और नंदी आर्या के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी, जिसमें हम आपको अभी सुनवा रहे हैं प्रहलाद सिंह मेहरा के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत।

श्रोताओं, एक बार पुनः आप सभी को आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष बखूबी पूर्ण होने की ढेरों शुभकामनाएं।

AIR at 90. आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, और इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं प्रहलाद सिंह मेहरा की गाई ये छपेली।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी, और अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं नंदी आर्या के गाए कुछ कुमाऊनी लोकगीत। तो आइए सुनते हैं।

नंदी आर्या के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ ही कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान

0: वन भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
3: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों

0: के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
3: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने 2 मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन

0: टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आपने गोपाल चंद्र जोशी का बांसुरी पर बजाया राग अलहिया बिलावल सुना। आपके साथ तबला संगत की थी आनंद सिंह बिष्ट ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
2: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है।

0: बहुजन हिताय, बहुजन हिताय आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है। फिलीपींस में आज सुबह 7:07.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलीपींस के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान के अनुसार भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप पर जनरल सेंटोस शहर से 13 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी और उत्तरी मुलुक प्रांतों में भी लोगों ने इस भूकंप के झटके महसूस किए। ताइवान, जापान, गुआम, पापुआ न्यू गिनी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:05 हुए हैं। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आपके ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस और पत्रों से प्राप्त आपकी ही पसंद के चंद गीत। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुर, लय और ताल से सजे इस संगीतमय सफर में, जो सजा है आपकी फरमाइश के नगमों के साथ।

श्रोताओं, आज आकाशवाणी ने अपने गौरवशाली 90 वर्षों को बखूबी संपन्न किया है। आकाशवाणी आज उत्सव मना रहा है अपने खुशहाल 90 वर्षों का। 90 साल केवल समय का एक आंकड़ा नहीं होते, ये यादों की वो यात्रा है जो पीढ़ियों के दिल में बस गई। आकाशवाणी की आवाज केवल तरंगों पर नहीं चलती, ये चलती है लोगों के जीवन के साथ। कभी भोर के वातावरण को इसने भक्तिमय बनाया, कभी गीतों की बारात आई, कभी युवाओं का सहारा बनती है ये आवाज, कभी किसी माँ की रसोई का साथी, कभी कवि की कल्पना को आवाज देती है, तो कभी तन्हाई में हम सफर बन जाती है आकाशवाणी। घरों में जब रेडियो चला तब पूरा परिवार एक साथ आकर बैठ गया, और जैसे ही अपने पसंदीदा कार्यक्रमों की आवाज कानों पर पड़ी, ऐसा लगता है मानो कोई हमारे सामने बैठकर हमारे सामने ही एक खूबसूरत तस्वीर तैयार कर रहा है, और हमें उन बातों को, उन जानकारियों को बिल्कुल सामने बैठकर दिखा रहा है। इस आवाज में अपनापन होता है, विश्वास होता है, एक ऐसा अनोखा रिश्ता बन जाता है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। आकाशवाणी के साथ ये रिश्ता समय के साथ पुराना नहीं हुआ, बल्कि और भी गहरा और खास होता चला गया। ये दो आत्माओं का गहरा रिश्ता है जो अनकहे संबंध की दिलकश भावना को दिखाता है।

आकाशवाणी का श्रोताओं के साथ नाता बहुत खास है, जो दिल को वाकई हमेशा लुभाता रहता है। दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आकाशवाणी का श्रोताओं के साथ इसी नाते को सुनते हैं इस खूबसूरत गीत के माध्यम से, और आप सभी प्रिय श्रोताओं को पुनः आकाशवाणी की गौरवशाली 90 वर्षों की ढेरों शुभकामनाएं। आपका साथ और आकाशवाणी का विश्वास यूं ही बस चलता रहे, यूं ही ये नाता हमेशा यूं ही बना रहे, यूं ही ये प्यार बढ़ता रहे और बस बढ़ता रहे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं।

फिल्म आ गले लग जा से, जिसे गाया था किशोर कुमार ने, साहिर लुधियानवी ने जिसे लिखा था और आर डी बर्मन ने सजाया था संगीत से, और अपने मैसेजेस और खतों के माध्यम से आप सभी ने इन गीतों को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा अमीन दीवान और आदेश कुमार काले इसी गीत को सुनना चाहते थे। गांव कुम्हारहेड़ा, जिला सहारनपुर से सैयद मसरूर, अजहर हसन, इब्राहिम नाजिया, आफिया इसी गीत के इंतज़ार में थे। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, कुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली फलना झा, श्वेता रंजन, पप्पू, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार और गजेंद्र कुमार रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता थे। दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से थे भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से थे विश्वनाथ साहू और चडोकपरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। श्रोताओं, रेडियो पर आने वाले जो ये खत हैं, ये केवल कागज़ पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, ये किसी के दिल की धड़कन होते हैं, किसी का इंतज़ार होते हैं, तो किसी का अपनी भावनाओं को गीतों के माध्यम से दिखाने वाला आईना होते हैं। जब आप अपनी पसंद का गीत सुनने की फरमाइश एक खत के साथ आकाशवाणी को भेजते हैं, तो आपका दिल सिर्फ एक गाना नहीं मांगता, आप साझा करते हैं अपनी ज़िंदगी के एहसासों को। इन पत्रों में किसी के बचपन की यादें होती हैं, किसी का अपनापन होता है, किसी का विश्वास होता है, किसी का दोस्ती की मिठास को साझा करने का अनुभव होता है। आकाशवाणी तक, रेडियो तक पहुंचने वाला हर खत अपने साथ एक दुनिया लेकर आता है। उन शब्दों के पीछे किसी की मुस्कान छिपी होती है, किसी की उम्मीद, किसी का इंतज़ार और कभी कभी किसी के आँखों की नमी भी। तो आप सभी के इन पत्रों का, इस मैसेजेस का आकाशवाणी को हमेशा इंतज़ार रहता है।

आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं भरोसा फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने इस गीत को दी हैं आवाज़ें। राजेंद्र कृष्ण के हैं शब्द और रवि का है संगीत, और पसंद आप सभी की है। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा पाठक इसी गीत को सुनना

चाहते हैं लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिका कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से इसी गीत के इंतज़ार में है वलीउल्ला डब्लूउल्ला और परवीन आसमा। बुलंदशहर से इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर करी है बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और इनके पूरे परिवार ने। इंदिरा बिहार रायगढ़ से इसी गीत के इंतज़ार में है वसीम अक्रम नूरजहाँ, डब्लू अक्रम नूरजहाँ, वली अक्रम, उल्लाह अक्रम। राजनंदा गांव से हमारे श्रोता हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से इसी गीत का इंतज़ार कर रहे हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से इसी गीत को सुनने की इच्छा रखते हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं भरोसा फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी कोटावा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबीहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। इसी गीत के इंतज़ार में हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल। डोंगरगांव से इसी गीत को सुनने की फरमाइश करी है राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, अनिष्का और राधिका गजभिये ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी। लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से हमारे श्रोता हैं बाबा फरहान, संजू, सामिया, मुमताज, अमान, नीलोफर, शन्नू और शब्बो। इसी गीत के इंतज़ार में है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया और पप्पी भाटिया। आप सभी हैं जमशेदपुर से, तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं येशुदास और हेमलता की आवाज़ों में वो गीत जिसे लिखा और संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने। तो पेश है आपकी पसंद का ये नगमा।

0: Bold June make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6-year bands.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: बदलो बदलो आदत बदलो.
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो. अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए. अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे. RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
5: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्चय. श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत अब हम शामिल कर रहे हैं फिल्म कन्हैया से, और इस गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है आप सभी ने. नूर महल महसौल सीतामणि से नुसरत जहानाज, तलहा जहानाज, फरह जहानाज, रिफत जहानाज, मुसर्रत जहानाज, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज. कुआश बिहार से हमारे श्रोता हैं नरगिश जफर. बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी. पुराना तालाब डुमराव से इसी गीत को सुनना चाहते हैं वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज अंसारी. चमन पार्क दिल्ली से हैं डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा. सारिमपुर बक्सर से हमारे श्रोता हैं राज SD अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी. इसी गीत को सुनना चाहते हैं सरगुजा मैन पार्ट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा. बिहारी कॉलोनी लोनी से हमारे श्रोता है परवीन, शरफुद्दीन, वली और डब्ल्यू रोम. जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा, अकरम आसमा और उल्लाह आसमा. इसी गीत को सुनना चाहते हैं जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजी, राहुल कुमार धनजी, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे. खुर्दी रोड मानपुर से इसी गीत को पसंद किया है विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद और इनके पूरे परिवार ने. महादेव घाट अमलेश्वर से इसी गीत के फरमाइश करता है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ने. तो आप सभी साथियों की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं वो गीत जिसे गाया है मुकेश ने, लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन ने, जिसको अपने संगीत से सवारा है. फिल्म है कन्हैया.

श्रोताओ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और सुनते हैं आपकी ही फरमाइश का नगमा जो है फिल्म हम दोनों से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को कागज़ पर उतारा है और संगीतबद्ध किया है जयदेव ने और पसंद किया है हमारे इन सभी साथियों ने। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, मोहल्ला हलवाईयान शेखपुर जिला बिजनौर से हमारे श्रोता हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदारानी और हीना कौसर। इसी गीत के इंतजार में है गांव कुम्हारहेड़ा जिला सहारनपुर से सैयद मसरूर अजहर हसन, इब्राहिम नाजिया आफिया, सैयद मसरूर और इनका पूरा परिवार। जलगांव जंक्शन से इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमें लिख भेजी है दिनेश काले, वंदना काले, वसुधा वज्रसेन, डॉक्टर अपेक्षा अमीन दीवान, आदेश कुमार काले और इनके सभी साथियों ने। फुटानी चौक नारायण स्टेट से हैं ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारा सार आराध्या और लल्लू पंडित। मेसर मोहल्ला नरहर बाजार से इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है गुंजन पारा सार, अमित सुमित छोटू और बी के सुरगनैया ने। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं हम दोनों फिल्म का गीत। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये नगमा।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
4: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
4: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
5: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर, और हम हाजिर हैं आपकी ही पसंद का नगमा लेकर फिल्म गुड्डू से। देवकी पंडित और कुमार सानू ने इस गीत को गाया है, कागज पर उतारा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, और इस गीत को संगीत से सवारा है नौशाद ने, और पसंद किया है आप सभी साथियों ने। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अक्रम हुसैन, वसीम अक्रम, आरिज वसीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अक्रम, रुबीना वसीम, नदीम अक्रम, अमन अक्रम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख। कलेर बिहार से हमारे श्रोता है मोहम्मद आसिफ खान और निघत परवीन। नूर महल महसौल से इसी गीत को सुनना चाहते हैं हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू और हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू। इसी गीत के इंतज़ार में है बौरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश। इसी गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता जो हैं वाइट फिल्ट बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष। रामगढ़ कैंट से फरमाइश करता है महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। बंगाली पंजा नागपुर से इसी गीत को पसंद किया है प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े और जानवी रंभाड़े ने। काशी निवास नागपुर से हैं हर्षल रंभाड़े और वैष्णवी रंभाड़े। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश है गुड्डू फिल्म का ये नगमा।

AIR at 90. आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत निर्जय। आइए अब सुनते हैं साथी फिल्म का गीत, जिसे गाया है मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने। मजरूह सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद, और साथी आप सभी हैं जिन्होंने सुनना चाहा है ये गीत। ताज मोहम्मद अंसारी, साबिर राही, महराज जहां, आप सभी हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इसी गीत के इंतज़ार में है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशील, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रमा, पालपुरी, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से इसी गीत के इंतज़ार में है पीयूष सिक्का, कोयल और भाविक सिक्का। इसी गीत को सुनना चाहते हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोदी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, आप सभी बोरसरा नैलना छत्तीसगढ़ से हैं। इसी गीत को सुनने की इच्छा जाहिर की है मानपुर साबिर ज़िला मुरादाबाद से शेख ज़ियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान ने। तो आप सभी की फरमाइश पर पेश कर रहे हैं साथी फिल्म का ये नगमा।

श्रोताओं, एक बार पुनः हम आप सभी को आकाशवाणी के इन बेहतरीन 90 वर्षों की बधाइयां देते हैं और देते हैं साथ में शुभकामनाएं। आपके खत, आपके मैसेजेस जब इस कार्यक्रम के लिए हम तक पहुंचते हैं तो हम केवल उन खतों को पढ़ते नहीं, हमें ऐसा लगता है जैसे दूर दराज के शहरों, कस्बों और गांवों में बसे अनगिनत दिल एक ही डोर से जुड़ गए हों। रेडियो केवल एक आवाज़ नहीं रह जाता, ये बन जाता है भावनाओं का एक जीवंत पुल। आज भले ही संदेश भेजने के तरीके बदल गए हों, लेकिन हाथों से लिखे गए खतों की गर्माहट, स्याही में घुली भावनाएं उसी आत्मीयता के साथ आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये खत हमें याद दिलाते हैं कि आवाज़ें केवल सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। रेडियो पर आने वाला हर खत, आकाशवाणी से जुड़ने वाला हर संदेश किसी ना किसी दिल की एक छोटी सी धड़कन बनकर हमारे पास पहुंच ही जाता है। तो एक बार पुनः आकाशवाणी के 90 वर्षों का आप सभी को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं।

आकाशवाणी का साथ और प्यार आप सभी के साथ यूं ही बना रहे, इसी के साथ संपन्न करते हैं गीत निर्झर कार्यक्रम को। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुँच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। पेश है मिले जुले गीतों और गजलों का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम की अगली पेशकश में आइए सुनते हैं गुलाम अली को।

0: Akashvani at 90.
1: सुगम संगीत का कार्यक्रम सपरंग इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की अल्मोड़ा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजों में ये गजल।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई इस गज़ल के साथ ही मिले जुले गीतों और गज़लों का कार्यक्रम सबरंग अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलवे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज से बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उनका संकलन करेंगे। प्रदेश के सभी 11,733 BLO के पास गणना फॉर्म पहुंचा दिए गए हैं। 7 जुलाई तक चलने वाले अभियान के दौरान BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करेंगे और उन्हें एकत्रित करेंगे। साथ ही प्राप्त फॉर्मों को BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर अपलोड भी किया जाएगा। यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO उसके घर पर 3 बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी ध्येय वाक्य है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों के लिए बायोमास पैलेट से 24 घंटे गर्म पानी की क्रांतिकारी और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था की जा रही है। ये देश में अपनी तरह का पहला प्रयोग है। ये सुविधा पिरूल, चीड़ की सूखी पत्तियां और खच्चरों की ली से तैयार बायोमास पैलेट से चलने वाले गीजर के माध्यम से संचालित की जाएगी। गढ़वाल मंडल विकास निगम ये व्यवस्था केदारनाथ और लिंचौली में जल व्यवस्था सुचारू करने जा रहा है। सुलभ इंटरनेशनल केदारनाथ को पैदल मार्ग से खच्चर की लीद एकत्र करने और रुद्रप्रयाग के जंगलों से स्वयं सहायता समूह पिरूल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये पर्यावरण के अनुकूल पहल न केवल केदारनाथ क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। पुनर्परीक्षा इस महीने की 21 तारीख को आयोजित की जाएगी। NTA के अनुसार परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित होगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसका उद्देश्य केवल अभ्यर्थियों को उस शहर की जानकारी देना है जहां उनका परीक्षा केंद्र स्थित होगा। प्रदेश में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजनों को लेकर जिला स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में देहरादून में बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित कॉमन योग प्रोटोकॉल के व्यापक प्रचार प्रसार व जन सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तरों पर योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से योग को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी विभागों को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ावों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि अभियान का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। अभियान की जिम्मेदारी विभिन्न विभागों को सौंपी गई है। इसी क्रम में गंगा घाटी क्षेत्र में नगर पंचायत गंगोत्री और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने करीब 70 से 80 सूखा कूड़ा, प्लास्टिक की बोतलें, रैपर व अन्य अपशिष्ट सामग्री एकत्र की। प्रदेश के 90 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में 29 ट्रेडों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। करीब 8,164 सीटों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देहरादून निरंजनपुर स्थित नोडल आईटीआई के प्राचार्य मनमोहन कुड़ियाल ने बताया कि प्रवेश के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:35 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर बहार, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म के कुछ गीत। और हमारी आज की फिल्म है साल 2009 में रिलीज हुई रेडियो। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर बहार में।

श्रोताओं, आकाशवाणी ने आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण किए हैं और इस उत्सव की आप सभी सुधी श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ आज जिस फिल्म को लेकर हम हुए हैं हाजिर, वो है रेडियो लव ऑन एयर। इस फिल्म का निर्देशन ईशान त्रिवेदी ने किया है। मुख्य भूमिकाओं में हमें हिमेश रेशमिया, शहनाज केजरीवाला और सोनल सहगल नजर आते हैं। टी सीरीज के बैनर तले बनी ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ऑन एयर लव स्टोरी को दर्शाती है। इस फिल्म का वो गीत हम अब आपको सुनवा रहे हैं जो बताता है कि ये जिंदगी भी एक रेडियो ही है जो अलग अलग धुन सेट करता है, कभी हैप्पी, कभी सैड, कभी सेंटी तो कभी मैड, पर जो भी हो रेडियो ट्यून करना तो बनता है। If it's not

0: थोड़ा सोड़ाती है।
1: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
2: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
1: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, और इस कार्यक्रम में आज एक ही फिल्म के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं रेडियो फिल्म के गीत। श्रोताओं, इस फिल्म का संगीत गीत रेडियो के इर्द गिर्द घूमता है और ये गीत लिखे हैं सुब्रत सिन्हा ने। इस फिल्म के गीतों को बॉलीवुड हंगामा.com ने 5 में से 4 स्टार्स दिए हैं।

फिल्म के गीतों को आवाजें दी हैं श्रेया घोषाल, रेखा भारद्वाज, हिमेश रेशमिया और कैलाश खेर ने, और गीतों की धुन हिमेश रेशमिया ने तैयार की है। तो सुनते हैं इन सभी कलाकारों की कला का नमूना उस गीत के साथ जो काफी चर्चित हुआ।

वाला विवाद की अपनी असली जिंदगी थोड़ी सी उलझी हुई है। अपनी पत्नी से तलाक लेने की वजह से उसकी ज़िंदगी बिखरी हुई है, और इसी दौरान आरजे विवान और शनाया की ऑन एयर केमिस्ट्री को सुनने वालों ने इतना पसंद किया कि लोग उन्हें रेडियो के अलावा रियल लाइफ कपल समझने लगे, और कहीं ना कहीं ये ऑन एयर दोस्ती ऑफ एयर चल रहे रिश्तों को ख़राब करने लगी। और आगे क्या क्या होता है ये भी जानेंगे, पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो रेडियो की कहानी कुछ ऐसे है कि कहानी का हीरो विवान शाह यानी हिमेश रेशमिया मुंबई का एक लोकप्रिय रेडियो जॉकी है। उसकी आवाज़ लाखों श्रोताओं तक पहुंचती है। रेडियो पर हमेशा खुश, आत्मविश्वास से भरपूर और लोगों को बेहतरीन सलाह देने

विवान और शनाया का रिश्ता वास्तविक जीवन में एक दूसरा का साथ चाहने लगा। कभी कभी हम अतीत की यादों में उलझे रहते हैं और खुशियां हमारे सामने होती हैं, और ये फिल्म भी इसी नोट पर संपन्न होती है कि विवान और शनाया एक दूसरे के साथ को अपना लेते हैं। रिश्तों का मतलब केवल साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ संपन्न होती है फिल्म रेडियो की। कभी कभी मन का जो रेडियो है उसे भी ट्यून करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो करते हैं मन के रेडियो को ट्यून।

रेडियो फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार अब यहीं पर होता है संपन्न। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा ये कार्यक्रम। फिर हाजिर होंगे चंद नए नगमों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त प्रतिभा को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरभार FM 100.8 MHz और प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना फिल्म क्रांति से। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ें थी, संतोष आनंद के थे शब्द और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा और अमित त्रिवेदी के संगीत से सजा लुटेरा फिल्म का ये नगमा।

0: This June, make every drive feel smoother and every journey special.
1: Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
0: Equipped with features like 360-degree camera, head-up display and safety through 6 airbags.
1: The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month.
0: Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offer still stocks last. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC apply.
4: फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सैनिक भाइयों आइए आप सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का गीत इस गीत को आवाज़ें दी हैं सोनू निगम स्वानंद किरकिरे और शान ने गीत को कागज़ पर उतारा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीतबद्ध किया है शांतनु मोइत्रा ने

0: glamours into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry. Offers for a limited time only. TNC applies.
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
1: This June, make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
0: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में इरशाद कामिल का लिखा और जीत गांगुली के संगीत से सजा आशिकी 2 फिल्म का ये नगमा।

सैनिक भाइयों, आइए अब सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म का गीत, जिसे गाया है चिन्मय श्रीपदा और अरिजीत सिंह ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

टू स्टेट्स फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं विदुषी गिरिजा देवी का राग देवगंधार में गाया ख्याल।

0: journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC apply.
1: बिना ISI के निशान वाला कोई सामान मत लाया करो.
2: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो. सारा सामान ISI का ही है.
1: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है.
2: ये तो है. ISI के निशान वाला सामान लाएं,
1: झगड़ा मिटाएं,
2: विश्वास जगाएं.
3: Presenting the all-new Maruti Suzuki Victoris, the proud winner of Indian Car of the Year and a Bharat NCAP 5-star rated SUV. Experience first-in-segment features like underbody CNG technology, Dolby Atmos spatial sound and smart-powered tailgate convenience.
0: Available in petrol, CNG and strong hybrid options. Built for every journey. And this month, enjoy exchange benefits up to 80,000 rupees. Maruti Suzuki Victoris. Drive the future. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. PNC.
4: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद.

मेरी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत सत्कार और कीजिए स्वीकार अंजू पांगती का स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, आज है बहुत ही खास दिन रेडियो की दुनिया के लिए, आकाशवाणी के लिए। आकाशवाणी ने आज 90 सालों का गौरवशाली यादगार सफर पूरा किया है और ये सफर पूरा हुआ है आप सभी श्रोताओं के साथ, और इन गौरवशाली पलों में साक्षी रहे हैं आप सभी श्रोता। आकाशवाणी के 90 साल के गौरवशाली ऐतिहासिक यादगार सफर का आज हम सभी जश्न मना रहे हैं, और आकाशवाणी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। इस विशेष अवसर पर आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारी अनेक अनेक असीम अनंत शुभकामनाएं।

जन जन की वाणी अपनापन समेटे हर घर आंगन की एक मीठी सी प्यार भरी कहानी इंद्रधनुषी कार्यक्रमों से सतरंगी छटा बिखेरती है ये मेरी तुम्हारी हर एक की जानी पहचानी हमारी आकाशवाणी सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रमों से 90 गौरवशाली वर्षों से घर घर में दिन रात है पहुंचती कभी विश्वसनीय सूचनाओं का अंबार कभी शिक्षित करते कार्यक्रम हर घर द्वार क्या छोटे क्या बड़े क्या युवा क्या वयोवृद्ध हर एक तक मनोरंजन की बरसाते फुहार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मंत्र से जीवंत करता आठों याम 24 घंटे हर बार ये है हमारी आकाशवाणी जिसकी गूंज से गुंजायमान है सारा संसार बसा है जिसमें श्रोताओं के लिए बेशुमार प्यार है ये हमारी जानी पहचानी हर किसी की चहेती आकाशवाणी।

0: संजोए हुए आज का दिन है आकाशवाणी के नाम। 8 जून 1936 को भारत में एक ऐसी आवाज का आगाज हुआ जो आज 9 दशक की लंबी यात्रा तय कर चुका है। देश की सुरीली धड़कन हर भारतीय के हृदय को तरंगित करती, स्पंदित करती, देश के कोने कोने में रची बसी एक ऐसी आवाज जिसकी गूंज, जिसकी प्रतिध्वनि देश विदेश में गुंजित है। घर घर की, जन जन की मृदुल सरस वाणी आकाश वाणी। श्रोताओं, इतने सारे रेडियो स्टेशन, कोई भी ट्यून कीजिए, बस मन का रेडियो बजने दीजिए।
1: मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया

श्रोतों, आकाशवाणी ने अपने विविध प्रसारणों के माध्यम से एक सशक्त दमदार उपस्थिति हमेशा दर्ज की है। आकाशवाणी विश्वसनीय सूचनाओं से ज्ञान प्रसारित करती है, जन जन को शिक्षित करती है और हर आयु वर्ग के श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करते हुए उनके दिलों पर राज करती रही है, अपनी प्रासंगिकता हमेशा बनाए हुए है। तभी तो आकाशवाणी जन जन की वाणी है। और आज श्रोताओं, अपने 90 साल की यात्रा पूरी करने के बाद श्रोताओं के साथ साथ आकाशवाणी भी कुछ यूं ही झूम कर गा उठी है, क्योंकि आज बहुत बड़ी खुशखबरी जो है, खुशखबरी

तो श्रोताओं, 8 जून साल 1936 में शुरू हुआ आकाशवाणी का ये सफर आज दुनिया भर के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के बीच अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। देश भर में इसके 591 केंद्र स्थापित हैं। भारत के 92% भूभाग, 99% जनसंख्या तक अपनी पहुंच बनाए हुए है आकाशवाणी। और साल 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 184 बोलियों में अपना प्रसार बनाए हुए है। आकाशवाणी की मीठी मीठी बोलियां हर चेहरे की मुस्कान की मनमोहक पहचान है।

जी हाँ, याद आया ना, आकाशवाणी संकेत धुन की ये मधुर ध्वनि सुनकर आप जरूर आकाशवाणी के प्रसारण के शुभारंभ के क्षण को जरूर याद कर रहे होंगे। हम में से ना जाने कितने लोग इसी धुन को सुनकर ही सुबह सुबह उठते होंगे, तो कुछ सोते सोते ही हाथ बढ़ाकर अपना रेडियो सेट ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलते होंगे, है ना। आकाशवाणी की ये संकेत धुन एक प्रार्थना, एक उपासना की अनुगूंज है जो गुंजायमान है पूरे ब्रह्मांड के स्वर के साथ, नाद के साथ। और हाँ श्रोताओं, आकाशवाणी की एक अनूठी पहचान के रूप में प्रतिष्ठित है इसकी सिग्नेचर ट्यून यानी संकेत धुन। राग शिवरंजनी पर आधारित इस 30 सेकंड की मधुर धुन को 1936 में वॉल्टर कॉफमैन ने संगीतबद्ध किया था। इस धुन में तानपुरे की गूंज के साथ वायलिन की मधुर तान का समावेश भी है जो पश्चिमी ऑर्केस्ट्रेशन और भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत संगम है। तो श्रोताओं, आकाशवाणी की ये संकेत धुन चिर परिचित है हम सभी के लिए। भोर के बेला में इसी धुन को सुनकर कई दौर की कई पीढ़ियों ने अपनी प्रातः बेला का शुभारंभ किया है और आज भी ये ध्वनि घर घर में गुंजायमान रहती है आकाशवाणी के माध्यम से। और इसी मनमोहक संकेत धुन के बाद विविध कार्यक्रमों का सिलसिला चल पड़ता है। प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम, देर रात तक यानी 24 घंटे आकाशवाणी है विविध कार्यक्रमों के साथ, पल पल हर एक श्रोता के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी यानी आकाश से अवतरित हुई वाणी, इसी वाणी ने संपूर्ण राष्ट्र को अपनी वाणी से सुसज्जित किया और 90 वर्षों का यह खूबसूरत सफर पूरा किया। आकाशवाणी केवल शहरों तक ही नहीं बल्कि सुदूर क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से घर घर तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी परंपरा विविधता में एकता का प्रतीक है आकाशवाणी। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, देशभक्ति गीत, सुगम संगीत हो या क्षेत्रीय संगीत, हर वर्ग के कार्यक्रमों की आवाज है आकाशवाणी। हर स्वर, हर रंग, हर एक की आवाज है आकाशवाणी।

श्रोताओं, एक दौर जब सबसे अधिक उत्सुकता, आश्चर्य और बेसब्री से इंतजार रहता था, तो वो थी रेडियो से आने वाली आवाजें। ये आवाजें कभी बोलती, कभी गुनगुनाती, कभी मुस्कुराती, कभी ढांढस बंधाती, कभी सपनों के रंग भरती, जिंदगी के एहसासातों को एक नया संसार, एक नया आकार देती। ये आवाजें सदा गूंजती रहती हैं। दौर भले ही बदल गया हो, पर जिंदगी के इंद्रधनुषी रंग आज भी वैसे ही हैं। वक्त के साथ बदलाव आना जरूरी भी है और होना भी चाहिए, तभी तो रेडियो ने भी अपना स्वरूप कितना बदल दिया है ना। आज डिजिटल युग में आकाशवाणी पूरी तरह से अपडेट है। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, डीटीएच सेवाओं या फिर आपका अपना रेडियो सेट, इन सभी माध्यमों से ये देश विदेश में अपनी यानी हमारे देश की आवाज का जादू बिखेर रहा है। यही आवाज इसकी पहचान है और यही हमारी शान सम्मान भी है। तभी तो

90 सालों का ये गौरवशाली यादगार सफर अनवरत चलता ही रहा है, श्रोताओं और आकाशवाणी का अटूट बंधन बना रहा है। सुबह दिन या फिर रात, आकाशवाणी देता है विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आप सभी का साथ। अपने ज्ञान, विज्ञान, संगीत, कला, सूचना, संस्कृति, बोली, भाषा, खेत खली

रिहानों की बात, किसानों की बात, परंपराएं, देश विदेश के समाचारों के साथ ना जाने कितने सारे कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी अनमोल प्रस्तुतियों संग जुड़ाव बनाए हुए है आकाशवाणी। और हमेशा हवाओं के साथ, हवाओं ने विविध कार्यक्रमों के साथ यही पैगाम दिया है।

0: हवाओं के लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम। हवाओं के लिख दो हवाओं के नाम।
1: तो श्रोताओं, सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराने गुनगुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, विविध कार्यक्रमों से हम आपसे मिलते रहेंगे। आकाशवाणी का ये सुनहरा संसार सदा सुरीला मधुर मधुर बना ही रहेगा। वो चाहे गीतों नगमों में ढले हों, हमारी विरासत के संवाहक हों, वार्ता भेंटवार्ता समाचार बच्चों युवा वर्ग ग्रामीण अंचल या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हो, आकाशवाणी परिवार से जुड़े आप हम सभी हैं हमेशा। श्रोताओं से ही कार्यक्रमों की शोभा बढ़ती है। आप सुनते हैं, सराहते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं साझा करते हैं, तभी तो रेडियो की दुनिया संवरती है, निखरती है और एक सच्चे मित्र की तरह अपने श्रोताओं का साथ निभाती है आकाशवाणी। तो श्रोताओं, 90 सालों का ये सफर जिस तरह खूबसूरती के साथ आपके साथ चला है, बढ़ा है, यूं ही ये सफर आगे भी चलता रहे और नए नए आयाम गढ़ता रहे। एक बार फिर सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका साथ आपका स्नेह हमेशा बना रहे, आकाशवाणी के कार्यक्रम आप हमेशा सुनते रहें। इसी कामना के साथ आज मेरी पसंद में बस इतना ही। अंजू पांगती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर संसार।

सहज स्वागत करते हैं बहनों आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार में। आप सभी को आपकी रेडियो सखी हेमलता का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगी और इस समय हमारा कार्यक्रम घर संसार सुन रही होंगी। बहनों आधे घंटे के इस खूबसूरत कार्यक्रम में आज हम करेंगे आपसे कुछ नए रोचक विषयों पर चर्चा और साथ ही करेंगे आप सभी का मनोरंजन कुछ मधुर गीतों से। तो चलिए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। बहनों कार्यक्रम के आरंभ में आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय जनसंचार माध्यमों में से एक आकाशवाणी की 90 वर्षों के गौरवशाली सफर की। 8 जून 1936 को शुरू हुई यह आवाज आज 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी कर चुकी है। बहनों कल्पना करें अगर उस समय की, जब न मोबाइल फोन थे, न इंटरनेट और न ही सोशल मीडिया, देश के करोड़ों लोगों तक सूचना पहुंचाने का सबसे विश्वसनीय माध्यम केवल एक आवाज थी, आकाशवाणी की आवाज। एक ऐसी आवाज जिसने पीढ़ियों को जोड़े रखा, देश को जागरूक बनाया और भारत की संस्कृति को घर घर तक पहुंचाया। आकाशवाणी ने देश के करोड़ों लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आकाशवाणी देश के दूर दराज क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बना चुका है। पिछले 9 दशकों में आकाशवाणी ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक की यात्रा को अपनी आवाज से संजोया है। आकाशवाणी ने समाचार के साथ साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान, खेल और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसानों के लिए किसान कृषि कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक प्रसारण, महिलाओं के लिए महिला कार्यक्रम, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत के संरक्षण में आकाशवाणी ने की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। बहनों आज तकनीकी के बदलते दौर में भी आकाशवाणी ने स्वयं को समय के अनुरूप ढाला है। आज FM रेडियो, डिजिटल प्रसारण, मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। इस तरह बहनों आकाशवाणी भारत का एक विश्वसनीय जनसंचार का माध्यम है। समय के साथ आकाशवाणी ने नई तकनीकी को अपनाया है। आकाशवाणी के माध्यम से ही आप हमसे और हम आपसे जुड़े हैं। और बहनों इसी तरह जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार से। और अब समय हो चला है गीत संगीत का, तो आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: ने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: स्वागत करते हैं बहनों आप सभी का कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता क्रम में आइए आपको सुनवाते हैं लैंगिक समानता सुदृढ़ समाज विषय पर श्रीमती नीमा बिनवाल सामाजिक कार्यकर्ता अल्मोड़ा से की गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत।
4: स्वागत है।

0: आपका हमारे कार्यक्रम घर संसार में।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लैंगिक समानता क्या है और लैंगिक समानता का पाठ बचपन से सिखाना क्यों आवश्यक है?
1: मैम, लैंगिक समानता का आशय समाज में स्त्रियों पुरुष दोनों को हर क्षेत्र में समान अवसर एवं अधिकार मिलने चाहिए। लड़का हो या लड़की, जब समाज में दोनों को बराबरी के अवसर मिलेंगे तभी समाज में न्याय और विकास संभव है। यह पाठ लड़के और लड़कियों को बचपन से ही हर कार्य को साथ में सिखाना होगा, तभी आगे चलकर एक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण समाज बना पाएंगे।
0: मैम, घर, विद्यालय और समाज तीनों स्तर पर समानता कैसे लागू की जा सकती है?
1: मैम, विद्यालय बच्चों के भविष्य की शुरुआत होती है। अगर इस उम्र में हम घर एवं विद्यालय में किसी भी प्रकार से लड़का और लड़की में भेदभाव होते देखेंगे तो मन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में प्रारंभ से ही घर और समाज, विद्यालय में सुरक्षित एक खुशहाल समाज की नींव के लिए लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देना होगा और लड़का लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सके, इसके लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि इनमें भेदभाव ना हो।
0: जी, तो मैम घर पर हम कैसे इसे कम कर सकते हैं?
1: लड़का और लड़की, अगर घर में हमारे दो बच्चे हैं तो लड़के और लड़की को एक जैसी शिक्षा, उनको अगर हम कोई काम घर में बता रहे हैं, मामूली सी कोई छोटा सा काम भी है, तो उसके लिए भी हम उन दोनों को बराबरी का वो करेंगे। जैसे अगर लड़के से हम कह रहे हैं कि बेटा तू सफाई कर, तो बेटी से हम खाना बनवा रहे हैं, या एक ही स्कूल में उनको एक जैसी शिक्षा उनको दिला रहे हैं, एक जैसा उनको महत्व दे रहे हैं, तो घर से ही हम उनको समानता का पाठ पढ़ा सकते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, देखो मम्मी मेरे से घर में ऐसे काम करा रही है, और मैं बेटा हूँ तो मैं आराम से बैठ के कि मेरे लिए हर चीज ऑर्डर करूंगा तो आ जाएगा। ये वाली चीज उनको घर से ही सिखानी होगी कि आप दोनों एक जैसे हो, आपके लिए शिक्षा एक जैसी है, आपके लिए एक जैसी वेशभूषा हमने रखी है, घर में एक जैसा माहौल वातावरण हमने रखा है, तो तभी वो सीख पाएंगे।
0: तो मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि लैंगिक असमानता के मुख्य कारण क्या है?
1: लैंगिक असमानता के मुख्य कारण है हमारी रूढ़िवादी सोच
0: जी,
1: समाज में चली आ रही परंपराएं, महिलाओं को कमजोर समझा जाना, शिक्षा जागरूकता का अभाव, ये सब इसके कारण है। इन सब को बदलने के लिए हम सभी को मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, तभी असमानता को हम दूर कर सकते हैं।
0: जी मैम, कारणों की बात आपने की तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं?
1: मैम, लैंगिक समानता के लिए हम शिक्षा एक खेल कूद में समान अवसर देना है दोनों को। स्कूलों में लैंगिक समानता की शिक्षा देनी होगी। समाज में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना होगा। घर समाज में बराबरी का माहौल बनाना होगा। यहाँ तक कि कार्यस्थल पर समानता एक स्वस्थ माहौल का वातावरण बनाना होगा। ये सभी चीजें हमें लागू करनी होगी, तभी हम समानता के लिए अच्छे कदम उठा सकते हैं समाज में।
0: जी मैम, कार्यस्थल की बात अभी आपने की तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कार्यस्थल पर महिलाओं और पुरुषों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं ताकि कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की असमानता न हो?
1: हाँ, कार्यस्थल पर जैसे महिलाएं काम करती हैं, कहीं पर पुरुष और महिलाएं दोनों बराबर काम करती हैं तो उनके वेतन में भी अंतर होता है।
0: जी,
1: अगर वही काम करा तो उसको वेतन बढ़ा के दिया जाता है, महिलाएं उसी काम को करती हैं तो उसको कम वेतन दिया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़े असमानता का कारण है, इसे हमें दूर करना होगा। दूसरा, अगर महिलाएं कहीं पर काम कर रही है वहाँ पे जेंट्स ज्यादा है तो वो एक गलत दृष्टि से महिलाओं को ना देखें। और कार्यस्थल से दूसरा है, महिलाओं के साथ अगर वो 10 से 5 ड्यूटी कर रही है तो 10 से 5 ही वो ड्यूटी करे, उसको नाइट शिफ्ट के लिए मतलब उसे जबरदस्ती फोर्स ना किया जाए
0: उसे के लिए।
1: हाँ
0: जी,
1: तो कार्यस्थल पर समानता का यही हम स्वस्थ माहौल बना सकते हैं उनके लिए।
0: मैम, माता पिता का व्यवहार बच्चों की सोच को कैसे प्रभावित करता है?
1: माता पिता का व्यवहार बच्चों की सोच को गहराई से प्रभावित करता है। जब माता पिता घर से ही समानता, सम्मान और बिना भेदभाव का वातावरण बनाते हैं तो बच्चे भी लड़का लड़की को बराबर मानते हैं, बराबर सम्मान देते हैं। यदि माता पिता ही लड़कियों को कम और लड़कों को ज्यादा महत्व देंगे तो बच्चे के मन में या मस्तिष्क में वही गलत सोच घर कर जाती है। और लैंगिक समानता से बच्चों में कई सकारात्मक गुण भी विकसित होते हैं अगर हम उनको समान तरीके से देखेंगे तो।
0: मैम, पारंपरिक सामाजिक मान्यताएं लैंगिक समानता को कैसे प्रभावित करती हैं?
1: अगर भेदभाव मुक्त सोच, परस्पर सम्मान, सुरक्षित स्वस्थ वातावरण बनाने की सोच, सहानुभूति और जिम्मेदारी का एहसास

0: जो उन्हें संवेदनशील नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैम ये चीज पहले भी जैसे बता चुकी हूँ ना कि महिलाओं को शिक्षा शिक्षा से ही उनको आगे बढ़ाना है। अगर वो शिक्षित होंगी तो जो भेदभाव आ रहा है ये पीढ़ी आगे अगर शिक्षित होगी तो ये चीजें अपने आप ही कम हो जाएंगी। दूसरा अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो जॉब करेंगी, उनके मन में ये रूढ़िवादी विचार आने बंद हो जाएंगे तो उनमें समानता ऑटोमेटिक आएगी। दूसरा महिलाएं पुरुष दोनों पढ़े लिखे होंगे तो अपने बच्चों के साथ समान व्यवहार करेंगे तो उनके साथ आने वाले समय में ये जो हम कह रहे हैं कि लड़की और लड़के में भेदभाव होता है ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा।
1: जी, तो कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा के द्वारा हम लैंगिक असमानता है उसको हम दूर कर सकते हैं।
0: दूर कर सकते हैं,
1: बहुत बढ़िया।
0: पढ़ेंगी लिखेंगी तो ऑटोमेटिक उनके मन में अच्छे विचार आएंगे, है ना। वो अपने वो खुद भी एक लड़की है और वो जॉब कर रही होगी तो वो अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाएगी, उसको भी शिक्षा देगी, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर देगी, तो ये रूढ़िवादी विचार धीरे धीरे कम हो सकते हैं।
1: जी, बहुत बढ़िया।
0: मैम ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जिनसे महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और उनको कई जगह उनको हेल्प भी इनसे मिल सकती है। उनके भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने अधिकार, उनको इतने राइट्स दिए गए हैं, यहाँ तक कि नौकरियों में भी उनके लिए कई अवसर उनके लिए हैं, जैसे उनके लिए

0: जी बहुत बढ़िया मैम, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए जिनसे महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं और उनको कई जगह उनको हेल्प भी इनसे मिल सकती है। उनके भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतने अधिकार, उनको इतने राइट्स दिए गए हैं, यहाँ तक कि नौकरियों में भी उनके लिए कई अवसर उनके लिए हैं। जैसे उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान भी है, कहीं कहीं जगह रिजर्व सीट का उनके लिए प्रावधान है।
1: मैम, लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं?
0: लैंगिक समानता के प्रति अगर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो लड़के और लड़कियों को सम्मान देना है। घर के कार्यों में सभी को बराबर बांटना है। जैसे लड़का है लड़की है, जैसे मैं पहले भी आपको बताया था कि अगर दो बच्चे हमारे घर में बेटी और बेटा, तो दोनों को समान महत्व देना। अगर हम कोई काम उनसे करा रहे हैं तो दोनों को बराबर काम बांटना। शिक्षा और खेल कैरियर हर क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करना। स्कूलों में लैंगिक समानता पर जागरूकता कार्यक्रम और वर्कशॉप भी हम लोग करवा सकते हैं। समाज में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, अधिकारों पर अभियान भी चला सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनसे हम लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं।
1: मैम, जागरूकता अभियान की बात अभी आपने की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके द्वारा स्कूल और विद्यालयों में क्या कुछ इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं?
0: बिल्कुल मैम, हम लोगों के द्वारा स्कूलों में, यहाँ तक कि गाँव में भी ऐसे जागरूकता अभियान बहुत बार चलाए जाते हैं, जिसमें हम लड़कियों को, महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में बताते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ना है उन चीजों के बारे में बताते हैं, उनको कहाँ पे स्कॉलरशिप का, जैसे गरीब बच्चे हैं कि माँ बाप के वो नहीं पढ़ा पा रहे लड़कियों को, तो उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए भी उनको जानकारी देते हैं कि कहाँ से उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कैसे वो लोग आगे पढ़ सकते हैं, ये सारी जानकारी उनको हम देते हैं। इसके अलावा कई गाँव में हम देखते हैं कि लड़कियों को वो लोग शिक्षा नहीं देते, क्या करना है, इसकी शादी कर देनी है, तो उसके प्रति भी उनको जागरूक करते हैं। उनको जो आरटी के तहत निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, इसके बारे में भी उनको जानकारी देते हैं, ताकि उनको ये ना लगे कि उनके पास पैसा नहीं है तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगी।
1: मैम, आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैम, मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि लड़के और लड़कियां हमारे दोनों बराबर हैं, दोनों का महत्व हमारे समाज में बराबर है। अगर एक भी नहीं होगा तो हमारा समाज डगमगा जाएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का। इसलिए दोनों को घर से, स्कूल से समान महत्व, समान शिक्षा, समान सम्मान, ये सारी चीजें उनको घर से ही सिखानी होगी। उन्हें ऐसा बताना होगा कि वो दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे घर के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है।
1: जी मैम, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी लैंगिक समानता के बारे में आपने हमसे साझा की, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे कार्यक्रम घर संसार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद करती हूँ।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी लैंगिक असमानता, लैंगिक समानता सुदृढ़ समाज विषय पर श्रीमती नीमा बिनवाल, सामाजिक कार्यकर्ता अल्मोड़ा से की गई हमारी क्षेत्र संकलित बातचीत। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: Make every drive smoother with the Grand Vitara Strong Hybrid. Less fuel stress, more driving pleasure.
3: Experience the Maruti Suzuki Grand Vitara and enjoy amazing benefits up to ₹3,75,000. Offer valid till 30th June.
2: Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
1: स्वागत है बहनों एक बार फिर से आप सभी का घर संसार कार्यक्रम में। बहनों, हमें हमारी दैनिक आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन का सही उपयोग और प्रबंधन करना आवश्यक होता है। केवल पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि

से सही ढंग से खर्च करना, बचत करना और भविष्य के लिए निवेश करना भी जरूरी होता है। इन्हीं सब बातों की समझ को वित्तीय साक्षरता कहा जाता है। बहनों, आज हम भी आपसे चर्चा करेंगे वित्तीय साक्षरता समझें और सीखें विषय पर। बहनों, वित्तीय साक्षरता का अर्थ है वास्तविक जीवन में पैसे के कामकाज को समझना, पैसे से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे कमाना, खर्च करना, बचत करना, निवेश करना और कर्ज का प्रबंधन करने से है। ये एक ऐसा कौशल है जो आपको आपके आर्थिक भविष्य के बारे में सही और सूझबूझ भरे निर्णय लेने में मदद करता है। इसलिए बहनों, ये ज़रूरी है कि हम सभी वित्तीय साक्षरता को समझें और सीखें। इसके लिए बहनों, सबसे पहले अपनी आय और व्यय का सही प्रबंधन करना आवश्यक है, यानी आप अपने छोटे बड़े सभी खर्चों का हिसाब एक डायरी में लिख सकती हैं। इस तरह एक मासिक बजट बनाकर उसी के अनुसार आप खर्च कर सकती हैं। बहनों, बचत करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए अपनी आय का कुछ हिस्सा बचत के रूप में सुरक्षित रखना भी आवश्यक है, जो भविष्य के लिए हमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे ही बहनों, अपनी जमा पूंजी को सही जगह इस्तेमाल करना निवेश कहलाता है। इससे आप अपनी जमा पूंजी का सही और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प जैसे म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे ही बहनों, वित्तीय साक्षरता समझने के लिए ऋण प्रबंधन के बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ऋण कितना लेना है और कैसे उसे समय पर भरना है, ताकि अतिरिक्त ब्याज से बचा जा सके। इस तरह बहनों, वित्तीय साक्षरता को समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। यह भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके माध्यम से आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है, जैसे घर खरीदना हो, बच्चों की शिक्षा के लिए या स्वयं का कोई व्यवसाय करना हो। बहनों, आजकल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन लेन देन के कई साधन उपलब्ध हैं। इनके बारे में सही जानकारी होना भी बेहद आवश्यक है। यदि इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तो धोखाधड़ी या नुकसान का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए वित्तीय साक्षरता को समझना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह बहनों, वित्तीय साक्षरता पैसे के गणित को समझने के साथ साथ उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करके एक सुरक्षित और समृद्ध आर्थिक भविष्य का निर्माण करना है। तो बहनों, ये तो थी कुछ बातें वित्तीय साक्षरता समझें और सीखें विषय पर। और अब कार्यक्रम में सुनते हैं ये खूबसूरत चीज़।

बहनों की जीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी दीपिका पंत। बहनों जल्दी ही आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो सखी हिमलता को दीजिए आज के घर संसार कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी मैंने सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से

0: सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाला में फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। देहरादून जिले के हरिपुर गांव में महिलाओं की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज देहरादून के मक्कावाला में फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण मौजूदा समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वृक्षारोपण इसके लिए एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान का भी प्रतीक है। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्री जोशी ने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में भी सहायक हैं। उन्होंने युवाओं और सामाजिक संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह भी किया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। जल जीवन मिशन का सबसे ज्यादा फायदा पर्वतीय जिलों को मिल रहा है। चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में 76,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसमें 1,244 योजनाएं बननी थी, जिनमें से 1,140 पूरी हो चुकी हैं। शेष इस वर्ष के अंत तक पूरी कर ली जाएंगी।
1: जल जीवन मिशन, जिसमें सभी रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनिंग टैप वाटर कनेक्शन दिया जाना था, ये हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल रहा है। इसमें अभी तक 76,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं हमारे सभी रूरल हाउस होल्ड को, इसमें सैचुरेट किया जा चुका है। साथ ही यदि स्कीम्स की बात करें तो 1244 स्कीम्स इसमें बननी थी, इसमें से 1140 स्कीम हमारी पूर्ण हो गई हैं। लगभग 92% स्कीम्स में कार्य पूर्ण हो गया है। शेष स्कीम में भी इस वर्ष के अंत तक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। देखिए, इसमें शिकायत समाधान के लिए पूरा तंत्र है, DWSM यहाँ पर बैठता है, उन शिकायतों को देखा जाता है। कुछ जगह पर फंडिंग चैलेंज आने की वजह से ठेकेदारों के द्वारा काम बीच में स्लो कर दिए गए थे, परंतु अभी उनके द्वारा लगातार काम में तेजी लाई जा रही है और जहां जहां भी स्रोत का इश्यू है या अन्य इश्यू है उनको भी रिजॉल्व करा के इन स्कीम्स को टाइमली कम्प्लीशन कैसे हो उस पर कार्य किया जा रहा है।
0: पौड़ी जिले में भू कानून के प्रभावी अनुपालन के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धुमाकोट तहसील के ग्राम लुविंठा मल्ला में भू कानून के उल्लंघन से जुड़े एक प्रकरण में जिला प्रशासन ने लगभग 27 नाली भूमि को राज्य सरकार में निहित कर उस पर कब्जा ले लिया है। धुमाकोट के उपजिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित प्रकरण में बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदने का मामला संज्ञान में आया था। मामले की जाँच, राजस्व अभिलेखों के परीक्षण तथा जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की गई। इसके तहत भूमि को राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए, जिसके अनुपालन में राजस्व विभाग ने भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि जिले में भू कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के विरुद्ध प्रशासन का अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: देहरादून जिले में कालसी विकास खंड के हरिपुर गांव में महिलाओं की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप के तहत सितंबर 2024 में स्थापित इस यूनिट ने सैकड़ों महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की ओर से 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस यूनिट

0: में कोल्ड और हॉट प्रेस्ड तकनीक से सरसों तेल का उत्पादन किया जा रहा है। परियोजना सहायता, बैंक ऋण और महिलाओं के अंशदान से शुरू हुई ये पहल आज स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय का स्थायी स्रोत बन चुकी है। एक रिपोर्ट।
1: 14 ग्राम संगठन, 120 स्वयं सहायता समूह और 764 महिलाएं उत्पादन, पैकेजिंग और विपणन कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। यूनिट से प्रतिमा करीब 70,000 रुपए की आय हो रही है, जबकि स्थापना के बाद से अब तक 24 से 25 लाख रुपए मूल्य का सरसों तेल बेचा जा चुका है। इसके अलावा 4 से 5 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी मिला है। महिलाओं द्वारा तैयार सरसों तेल हिलांस ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध है। उत्पाद की गुणवत्ता के चलते इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। हाउस ऑफ हिमालयाज ने यूनिट से 1,700 लीटर सरसों तेल की खरीद की है, जिससे महिलाओं को 5 लाख रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई। वहीं IIT रुड़की को भी यहां से नियमित आपूर्ति की जा रही है। तेल उत्पादन के साथ निकलने वाली सरसों की खल भी आय का अतिरिक्त स्रोत बन रही है, जिसे किसानों और पशुपालकों को 25 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। ऑनलाइन माध्यमों से भी उत्पाद की बिक्री की जा रही है, जिससे बाजार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रीप के जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि कालसी की यह यूनिट ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि स्थानीय बाजार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विभिन्न संस्थानों से मिल रहे सहयोग के कारण उत्पादों को अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। यह पहल आत्मनिर्भर उत्तराखंड और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है।
0: प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के तहत आज से BLO घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित कर उन्हें एकत्रित करेंगे। 7 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्राप्त फॉर्मों को BLO ऐप के माध्यम से डिजिटाइज कर अपलोड भी करेंगे। अगर कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो BLO उसके घर पर 3 बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। राज्य में लगभग 79 लाख से अधिक मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रदेश के सभी मतदाताओं से BLO को सहयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि 14 जुलाई को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता ECI नेट ऐप के माध्यम से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकते हैं। वहीं बुक अ कॉल विद BLO सुविधा के जरिए मतदाता अपने क्षेत्र के BLO से सीधे संपर्क कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत देहरादून के मक्कावाला में फलदार पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन मिशन प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। देहरादून जिले के हरिपुर गांव में महिलाओं की ओर से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बनकर उभरी। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: FM 100.8 MHz पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। शुभारंभ कर रहे हैं गुलजार के गीत के साथ। कलाकार हैं भूपेन हजारिका का।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: और अपेश बशीर बद्र का कलाम, आवाज हरिहरन की।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार चार दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
3: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
2: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
3: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
2: जी।
3: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
2: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
3: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
3: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
2: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।

0: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है।
1: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
1: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
1: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जाँच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
0: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: बुद्ध बनाया, रोटी खोकर कौआ बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौआ अपनी रोटी गंवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य

0: की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
1: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे

0: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई। उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
1: मंगला।
2: हाँ?
1: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
2: ठीक है।
1: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना।
2: हाँ हाँ।
1: उठाकर मुझे दे।
2: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
1: हाँ।
2: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
3: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
1: ये हाँ ऐसे, ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
2: अरे वाह।
1: और ये इसकी पूंछ।
2: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
1: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
2: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
1: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
2: ठीक हाँ, है
1: हाँ, अब बना।
0: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
2: भाई
1: हा?
2: अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
1: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: ठीक है,
1: चल चल चल चल चल, हम दोनों झाड़ियों में छुप जाते हैं।
2: ठीक है,
1: चल चल
3: चल। कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए, और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला है?
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहाँ रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन ये भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, माँ से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टातिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं। समझ लीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।
2: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामास्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
0: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
3: रामास्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामास्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे,

0: उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
2: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
2: जी।
3: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा, मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
0: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी, अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
0: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
3: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
3: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की कड़ी संख्या 1301। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उत्तराखंड के लोकगीत। आज आपको सुनवा रहे हैं निर्मला आर्या और साथियों के गाए कुमाऊनी लोकगीत।

0: निर्मला आर्य के गाए कुमाऊनी लोकगीत उत्तराखंड के लोकगीत में अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी अल्मोड़ा से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
4: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच आने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।

0: दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और इसराइल के बीच हालिय सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग। जानकारी दे रहे हैं श्री नवीन चंद्र बेलवाल।
5: किसान भाइयों व बहनों, जैसा कि आज पूरे विश्व में मानव जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने से इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए जो हमारी खेती है उससे अधिक से अधिक उत्पादन लेने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश में अधिक कृषि उपज लेने के लिए कृषि भूमि की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे खेतों की मिट्टी स्वस्थ व उपजाऊ बनी रहे, जिससे हमारे किसान भाई लंबे समय तक खेतों से उत्पादन लेते हुए एक टिकाऊ खेत

को स्थापित कर सकेंगे। जैसा कि अधिक उत्पादन लेने के लिए रासायनिक खादों, कीटनाशक व रोगनाशक रसायनों का खेती में अधिक प्रयोग होने से आज इन रसायनों द्वारा अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन रसायनों के कारण खेत की मिट्टी, पानी, जलवायु, पर्यावरण में अत्यधिक हानिकारक रसायनों के रहने से इनके द्वारा मानव, पशु पक्षियों व अन्य जीव जंतुओं पर इनके हानिकारक प्रभाव देखे जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर वर्ष 2 लाख लोग कृषि में प्रयोग हो रहे हानिकारक रसायनों के कारण मारे जाते हैं। खेती में रसायनों के प्रयोग से आ रही गंभीर समस्याओं को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर जैविक खेती को अपनाया जा रहा है। आज कृषि में रसायनों का प्रयोग कम से कम करने व जैविक साधनों से खेती करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। जैविक साधनों में जैविक खादों का कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है। इन जैविक खादों में कंपोस्ट खादें हैं, हरी खाद है, वर्मी कंपोस्ट व जैव उर्वरक ये प्रमुख खादें हैं। बहनों, आज कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जैव उर्वरक आखिर हैं क्या। जैव उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक उर्वरक हैं। ये जैव उर्वरक मिट्टी में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विशेष सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। इन उर्वरकों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा हवा में स्थित नाइट्रोजन, जिसको पौधे सामान्यतया शोषित नहीं कर पाते, ये उर्वरक हवा में विद्यमान नाइट्रोजन को पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसी तरह मिट्टी में स्थित अघुलनशील फास्फोरस, जिसे पौधे सामान्यतया नहीं ले पाते, सूक्ष्म जैव उर्वरक इस फास्फोरस को घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार पोटाश की उपलब्धता फसल में बढ़ाने के लिए पोटाश संचरण जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ ही धान की रोपाई वाली फसल में नील हरित शैवाल व एजोला फर्न धान की फसल में नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। आज हमारे देश में अनेकों सरकारी विभाग एवं निजी क्षेत्रों के उद्यमी इन जैव उर्वरकों का निर्माण कर रहे हैं। पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के आधार पर इन जैव उर्वरकों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक, इसके साथ ही पोटाश उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक और साथ ही जिंक, सल्फर व आयरन उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरक भी इस वक्त उपलब्ध हैं। इनमें राइजोबियम नामक जैव उर्वरक दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। इस उर्वरक का प्रयोग दाल वाली फसलों जैसे चना, मसूर, राजमा, मूंग, उड़द आदि में तथा तिलहनी फसलों में सोयाबीन व मूंगफली, और जो चारे वाली हमारी फसलें हैं उनमें बरसीम और इसका में इस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। यह राइजोबियम जैव उर्वरक दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों का निर्माण कर वायुमंडल में जो नाइट्रोजन घुली रहती है उसको लेकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक दलहनी फसल में अलग अलग जाति के राइजोबियम जीवाणु जड़ों में गांठों का निर्माण करते हैं, इसलिए किसान भाई ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रत्येक दलहनी फसल के लिए राइजोबियम जैव उर्वरक भी अलग अलग प्रयोग करने होते हैं। राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग दलहनी फसलों में करने से 10-20% तक अधिक उपज पाई गई है। दलहनी फसलों के अलावा खाद्यान्न फसलों में नाइट्रोजन पोषक तत्व की वृद्धि के लिए एक जैव उर्वरक है जिसको एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक कहते हैं। यह जीवाणु मुक्त रूप से नाइट्रोजन योगीकरण क्रिया द्वारा मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को एकत्र कर पौधों के उपयोग लायक बनाता है। एजेटोवेक्टर जैव उर्वरकों के प्रयोग से गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, सरसों व सूर्यमुखी आदि की फसलों में 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन तक एक हेक्टेयर में उपलब्ध हो जाती है, जिससे इन फसलों की पैदावार में 10% तक की वृद्धि देखी गई है। खाद्यान्न व तिलहनी फसलों के अलावा एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग सब्जियों जैसे टमाटर, आलू, भिंडी, गोभी व बैगन आदि फसलों में भी किया जा सकता है। देखा गया है कि एजेटोवेक्टर जैव उर्वरक कुछ बीज जनित फफूंद की रोकथाम में भी उपयोगी रहता है। तीसरी तरह के नाइट्रोजन प्राप्त करने वाले जैव उर्वरकों में एजो स्पाइरेलियम नामक जैव उर्वरक है। ये जीवाणु भी मिट्टी में मुक्त रूप से रहकर वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग सभी धान्य फसलों व सब्जियों में किया जा सकता है।
इस जैव उर्वरक के प्रयोग से उपज में 10 से 15% तक

की वृद्धि देखी गई है। एजो स्पाइरेलम जैव उर्वरक को अपने कार्य वृद्धि के लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिससे यह उर्वरक धान की रोपाई की गई फसल में भी अच्छा कार्य करता है। अब बात आती है फास्फोरस उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों की। इन्हें फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक भी कहा जाता है। हमारे खेतों की मिट्टी में स्थित फास्फोरस का कुछ भाग पौधों को उपलब्ध होने की अवस्था में नहीं रहता है। फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक के जीवाणु इसे उपलब्ध हो सकने वाली अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इस जैव उर्वरक का प्रयोग सभी दलहनी धान्य फसलों व अन्य फसलों में किया जाता है। इस फास्फेट विलयकारी जैव उर्वरक के प्रयोग से 10 से 20 किलोग्राम फास्फोरस जो है वो तत्व प्रति हेक्टेयर फसल में उपलब्ध हो जाता है। अलग अलग फसलों में इससे करीब 5 से 25% तक की जो फसलों में है वो वृद्धि देखी गई है। इसके साथ ही पोटास की फसल में उपलब्धता बढ़ाने के लिए पोटास घुलनशील जीवाणु उर्वरक है, और इसी तरह जिंक की फसल में उपलब्धता बढ़ाने वाले जिंक घुलनशील जीवाणु उर्वरक तथा आयरन व सल्फर घुलनशील जीवाणु उर्वरकों का भी फसलों में प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। अब जैव उर्वरकों का प्रयोग कैसे करना है किसान भाई, यह जानना बहुत आवश्यक है, जिससे सही तरीके से जैव उर्वरकों का प्रयोग कर फसलों से अच्छा उत्पादन लिया जा सके। जैव उर्वरकों का प्रयोग बोई जाने वाली फसल के बीजों को उपचारित कर, रोपाई की जाने वाली फसल के पौधों की जड़ वाले भाग को जैव उर्वरक के घोल में डुबोकर या सीधे खेत में भी इन उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। साधारणतया जैव उर्वरकों का प्रयोग बीज में उपचार विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में जो है जैव उर्वरक की 20 ग्राम मात्रा 1 किलोग्राम बीज उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती है। यदि जो बीज हैं वो बड़े आकार के हैं, जैसे राजमा, फ्रांस बीन, सोयाबीन, चना, मक्का, तो इन बीजों के उपचार के लिए 1 किलोग्राम बीज में 30 से 40 ग्राम जैव उर्वरक की आवश्यकता होगी। बीजों को जैव उर्वरकों से उपचारित करने के लिए जो है 1% गोंद या गुड़ का पानी में घोल बना लें। और अब जिन बीजों को उपचारित किया जाना है उन्हें किसी साफ फर्श या पॉलिथीन के ऊपर रखकर इसमें इस बने हुए घोल को धीरे धीरे डालकर हल्के हाथों से बीज में मिलाएं, जिससे घोल समान रूप से बीजों पर लग जाए। अब बीज की मात्रा के अनुसार इन बीजों के ऊपर जैव उर्वरक फैला दें तथा हल्के हाथ से इन बीजों को इस प्रकार मिलाएं, जिससे हर बीज पर इस जैव उर्वरक की एक परत लग जाए। अब इन उपचारित बीजों को छाया में सुखा कर और इसकी तुरंत फिर खेत में बुवाई कर दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने वाले जैव उर्वरकों को एक साथ मिलाकर प्रयोग करने से भी फसल की उपज में अधिक वृद्धि देखी गई है। सब्जियों तथा अन्य फसलों में जिनकी रोपाई की जानी है, इसमें रोपाई की जाने वाली फसलों की पौध को उखाड़कर जड़ों को साफ पानी से धो लें, फिर पौधों की जड़ों को जैव उर्वरक के घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रोपाई करनी चाहिए। घोल व जैव उर्वरक की मात्रा रोपाई की जाने वाली पौध की मात्रा के अनुसार रखनी चाहिए। आलू आदि कंद वाली फसलों के बीजों को जैव उर्वरक के 10% घोल में 5 से 10 मिनट तक इनके कंदों को डुबोकर उपचारित कर तब बुआई करनी चाहिए। यदि किसान भाई बुआई किए जाने वाले बीजों को रासायनिक फफूंदनाश या अन्य रसायनों से उपचारित कर रहे हों, तो रसायनों से उपचारित करने के बाद ही जैव उर्वरकों का प्रयोग इन बीजों में करना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग सीधे खेत में भी किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए एक नाली खेत के लिए 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट या फिर खेत की भुरभुरी मिट्टी दो में 200 से 250 ग्राम जैव उर्वरक को अच्छी प्रकार मिलाकर जो खेत की अंतिम जुताई करते हैं उस समय खेत में मिला दें। धान की रोपाई की गई फसल में जो है उसमें हरित शैवाल, एजोला फर्न व माइकोराजा का प्रयोग करने से भी धान की उपज में 15 से 20% तक की उपज में जो है वो वृद्धि देखी गई है। कम लागत लगाकर जैव उर्वरकों के प्रयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो होती है, इसके साथ ही फसल में रोगों से बचाव व खेत की मिट्टी को उपजाऊपन बढ़ाने में भी इन उर्वरकों का विशेष महत्व रहता है। जैव उर्वरकों के प्रयोग में कुछ सावधानियां किसान भाई अवश्य रखें, इनमें जिससे इनमें लगने वाली लागत से कहीं अधिक उत्पादन फसलों से प्राप्त किसान भाई कर सकते हैं। सबसे पहले प्रयोग में लाए जाने वाले जैव उर्वरकों को हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही लें। इन पैकेटों के ऊपर जो लिखी हुई समयावधि है उसके अंदर

0: भी इनका प्रयोग कर लें। बुवाई के समय खेत की मिट्टी में नमी का ध्यान रखें, इनके प्रयोग के समय खेत में नमी होनी चाहिए। अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में इन जैव उर्वरकों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। अगर आपकी मिट्टी जो है अम्लीय या क्षारीय है तो ऐसी भूमि में मृदा सुधार के उपाय करने चाहिए। जैव उर्वरकों से अधिक लाभ लेने के लिए खेतों में जीवांश की सही मात्रा होनी आवश्यक है, जिसके लिए खेतों में अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग किसान भाई करें। जैसा कि पर्वतीय कृषि में लगभग 85% खेती का क्षेत्रफल वर्षा पर निर्भर है, जिसे हम उपराव खेती के नाम से जानते हैं। इस उपराव खेती में अधिकांश खेती जैविक खादों के प्रयोग द्वारा ही की जाती है। जो 15% सिंचित खेती यहाँ पर है, उसमें रासायनिक खादों के साथ ही हमारे किसान भाई बहन जैविक खादों का भी भरपूर प्रयोग करते हैं। फसल को पोषक तत्व और अधिक मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए एक सस्ते और आसान साधन के रूप में जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर किसान भाई खेतों से अच्छा व अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: कृषि उत्पादन में जैव उर्वरकों की महत्ता एवं उपयोग, इस विषय पर खेती की बातें कार्यक्रम में अभी श्रोता सुन रहे थे जानकारी नवीन चंद्र बेलवाल से। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे। रात 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, रात 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। शाम 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर में आज कलाकार होंगे भुवन चंद्र आर्या। संध्या 5:15 पर युववाणी में आज की बात का विषय रहेगा समुद्रों में बसा जीवन, इतिहास जगत और आज का इतिहास भी युवा साथी सुनेंगे। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा सुनिएगा विश्व समुद्र दिवस पर। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत में आज कलाकार होंगे माधव इंगले और अनुराधा पोडवाल। संध्या 7 बजे ग्राम जगत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा, जिसमें आज की बातें होंगी ढिंगरी मशरूम उत्पादन और लाभ विषय पर। चर्चा सुनिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ विषय पर। फिल्म संगीत शाम 7:40 पर और रात 9:15 पर इंद्रधनुष में और रात 10:30 पर। सबरस सुगम संगीत का ये कार्यक्रम होगा रात 8 बजे और रात 10 बजे भी सुगम संगीत आप सुन सकेंगे। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: आकाशवाणी एट 90
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार और आज फनकार हैं जानी मानी मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी को आज ख़ास तौर पर हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो शिल्पा शेट्टी को उनके जन्मदिन की हम देते हैं ढेर सारी शुभकामनाएँ। श्रोताओं, 8 जून 1975 को मैंगलोर कर्नाटक में जन्म हुआ शिल्पा शेट्टी का। उनके माता पिता सुनंदा शेट्टी और सुरेंद्र शेट्टी और उनकी एक छोटी बहन है शमिता शेट्टी जो अभिनय के क्षेत्र से ही जुड़ी हैं। शिक्षा की बात करें तो शिल्पा शेट्टी की शिक्षा सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल चेंबूर और बाद में माटुंगा के पोदार कॉलेज में हुई और खेलों में उन्हें बहुत रुचि थी। अपने स्कूल डेज के दौरान वो वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रही हैं।

जुड़ी हैं। शिक्षा की बात करें तो शिल्पा शेट्टी की शिक्षा सेंट एंथनी गर्ल्स हाई स्कूल चेंबूर और बाद में माटुंगा के पोदार कॉलेज में हुई, और खेलों में उन्हें बहुत रुचि थी। अपने स्कूल डेज के दौरान वो वॉलीबॉल टीम की कप्तान भी रही हैं और बेहद फिट रहती हैं, योगा करती हैं, ये तो हम सभी ने देखा है। और शिल्पा शेट्टी एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना भी है, यानी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं शिल्पा शेट्टी। और फिल्मों की बात करें तो उन्होंने फिल्म बाजीगर, जो कि साल 1993 में प्रदर्शित हुई, इसी फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की, और इस फिल्म ने उनको दो फिल्मफेयर पुरस्कारों से नवाजा।

तो श्रोताओं, फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले अपनी जो उन्होंने 10वीं की परीक्षा पूरी करने के बाद शिल्पा शेट्टी टेलीविज़न की दुनिया में विज्ञापन के साथ एक मॉडल के रूप में नज़र आई और इस तरह उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और बाद में कई अन्य जाने माने ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी वो नज़र आई थी। और फिल्मों की बात करें, जैसा कि आपको मैंने बताया, बाजीगर फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था और इस फिल्म के बाद उनकी फिल्म आई मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और अक्षय कुमार इस फिल्म में उनके साथ अभिनेता थे और इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्षय कुमार के साथ शिल्पा शेट्टी की जोड़ी बेहद चर्चित रही और दर्शकों द्वारा खूब सराही गई। ये फिल्म भी बेहद

श्रोताओं, शिल्पा शेट्टी की एक से बढ़कर एक कई फिल्में हैं, एक लंबी फेहरिस्त है। कुछ फिल्मों के नाम आपको याद दिला दें, जैसे धड़कन उनकी करियर की सफलतम फिल्मों में से एक रही है, और इसके बाद इंडियन रिश्ते और अपने मेट्रो, फिर मिलेंगे 10 लाइफ इन अ मेट्रो और कई फिल्मों में वो नज़र आई हैं, और अपने बेहतरीन अभिनय का जलवा उन्होंने बिखेरा है। शिल्पा शेट्टी अपने फिटनेस रूटीन के लिए भी बेहद चर्चित रही हैं, और लंबे समय से वो अपनी फिटनेस के लिए मशहूर भी हैं। उन्होंने अपने कई योगा और वेलनेस ऐप लॉन्च भी किए हैं। साल 2009 में व्यवसायी राज कुंद्रा से उन्होंने विवाह किया, और इनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। और छोटे पर्दे की बात करें तो टेलीविज़न की दुनिया में भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं।

उन्होंने एक शो, रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, और इसके बाद वो पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचानी जाने लगी। और इसके अलावा जज के रूप में कई डांस शोज़ में भी वो अक्सर नज़र आती रही हैं। तो एक बार पुनः हम उन्हें आज जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो यूं ही फिट रहें और एक्टिंग की दुनिया में आगे भी खूब सक्रिय रहें।

एक ही फनकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे और आज फनकार थी जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के बजे हैं 3। श्रोता जरूर इंतजार कर रहे होंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का।

सदाबहार फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो दोस्त अंजू पांगति। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। श्रोतों, बेहद खूबसूरत, शोख, सौम्य, उतनी ही प्रभावशाली अभिनय क्षमता से सराबोर अभिनेत्री का जब भी जिक्र आता है तो एक अभिनेत्री हमेशा अपने बेहतरीन अदायगी के लिए जानी जाती रही हैं। नाम है डिंपल कपाड़िया। आज डिंपल कपाड़िया जी का जन्मदिन है 8 जून को, तो सबसे पहले अपने कार्यक्रम की ओर से हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं जन्मदिन की।

तो श्रोताओं, डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को हुआ और उनके पिता का नाम चुन्नीलाल भाई कपाड़िया था, जो कि एक बहुत जाने माने मशहूर व्यापारी थे। और इनके डिम्पल के अपने 4 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। डिम्पल की 2 छोटी बहनें और 1 भाई है, और सिंपल कपाड़िया इनकी छोटी बहन है जो कि अभिनेत्री रही हैं। रीमा और भाई का नाम मुन्ना है। डिम्पल कपाड़िया ने फिल्मी दुनिया में बहुत छोटी उम्र में ही कदम रखा, और वो फिल्म थी बॉबी। जब वो मात्र 15 साल की थी तभी बॉबी फिल्म्स के ज़रिए उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। और इस फिल्म से जुड़ी अगर बात हम करें तो जब वो स्कूल में पढ़ती थीं तो एक रोज़ उनकी नज़र अखबार में पड़ी। उसमें इश्तिहार आया था कि राज कपूर नई फिल्म बॉबी के लिए एक चेहरे की तलाश कर रहे हैं। और डिम्पल ने पढ़ते पढ़ते अपने दोस्तों से तुरंत कहा, देखना ये फिल्म मैं ही करूँगी। हैरत की बात थी क्योंकि इससे पहले भी डिम्पल 13 साल की उम्र में ऋषिकेश मुखर्जी की मशहूर फिल्म गुड्डी का जो किरदार था उसे ठुकरा चुकी थी, जिसके बाद ये किरदार जया भादुड़ी को मिला था। और उनके पिता के दोस्त अंजना रवेल एक मशहूर स्क्रीन राइटर थीं। अंजना के रिश्तेदार डायरेक्टर H.S. रवेल की फिल्म संघर्ष, जो साल 1968 में प्रदर्शित हुई, तब 11 साल की उम्र में डिम्पल ने वैजयंती माला की बचपन का रोल भी निभाया था, हालांकि बाद में उनके सीन फिल्म से काट दिए गए थे। और बॉबी का इश्तिहार पढ़ने के बाद स्कूल से घर लौटते ही उन्होंने पिता से कहकर सारी जानकारी इकट्ठा करवाई और अपनी दोस्त मुन्नी धवन के ज़रिए तस्वीरें राज कपूर के दफ्तर भिजवाई। पहले तो राज कपूर साहब ने तुरंत उन्हें रिजेक्ट कर दिया। फिर उस दौर में वो ऋषि कपूर यानी अपने बेटे को भी इस फिल्म के ज़रिए लॉन्च कर रहे थे। और इस दौरान बहरहाल जब डिम्पल को रिजेक्ट कर दिया गया तो कुछ दिनों बाद उनके पिता के कहने पर राज कपूर की एक फिल्म के सेट पर मुलाकात हुई डिम्पल कपाड़िया से।

और उन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्हें बुलाया और इस बार वो चुनी गई। ये फिल्म करना डिम्पल का सपना था, लेकिन किसे पता था कि इस फिल्म के ज़रिए वो रातों रात मशहूर अभिनेत्री बन जाएंगी।

तो श्रोताओं, साल 1973 में राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बॉबी बेहद कामयाब फिल्म रही और इस फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया सुपरस्टार बन गई और कई फिल्मों के उनको ऑफर्स आने लगे, लेकिन उन्होंने सभी फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वो एक आइडियल बीवी बनना ज़्यादा उचित समझ रही थी, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही डिंपल ने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी रचा ली थी। हालांकि उनकी ये शादी ज़्यादा सफल ना हो सकी। इसके बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया दोनों अलग हो गए। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिंपल कपाड़िया ने एक बार फिर से पर्दे पर वापसी की और उन्होंने साल 1985 में एक फिल्म आई सागर। इस फिल्म में एक बार फिर ऋषि कपूर के साथ उन्होंने काम किया और इस फिल्म को निर्देशित किया था रमेश सिप्पी ने। और फिल्म सागर में डिंपल कपाड़िया ने अपने ख़ास अंदाज से दर्शकों को चौंका दिया और बॉबी के बाद इस फिल्म के लिए भी डिंपल को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।

डिंपल कपाड़िया ने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 75 फिल्मों में काम किया है और सागर फिल्म के बाद डिंपल की छवि एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर बन गई थी। इसके बाद उनकी फिल्म जाबाज जख्मी औरत लेकिन रिलीज़ हुई और इसके बाद वो बॉलीवुड की हिट अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। इसके बाद इसी दौरान डिंपल की एक और बेहद चर्चित फिल्म आई रुदाली। इस फिल्म में उन्होंने एक तरह से अपने गंभीर अभिनय के ज़रिए दर्शकों को या दर्शकों के बीच उन्होंने अपनी एक ख़ास जगह बनाई और इस फिल्म में उनके किरदार को बेहद सराहा गया और इस फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

तो श्रोताओं, समानांतर फिल्मों में भी वो नज़र आई, जैसे कि अभी आपने गाना सुना रुदाली फिल्म का, काश लेकिन जैसी फिल्में भी बेहद चर्चित रहीं और इन फिल्मों में डिंपल कपाड़िया के अभिनय को बेहद सराहा गया।

श्रुतों काम के प्रति उनका समर्पण, स्नेह और प्रतिबद्धता डिंपल को एक अलग पहचान दिलाती है। डिंपल कपाड़िया ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, मैं पैसे के लिए काम करती हूँ वरना मैं घर पर बैठना ज़्यादा पसंद करती। उन्होंने आगे कहा, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, इसने मुझे एक ही जीवन में कई किरदार निभाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। और दशकों लंबे करियर के बाद भी डिंपल कपाड़िया की जो उनके किरदार हैं, उनकी जो भूमिकाएं हैं, वो हमेशा दर्शकों को बहुत पसंद आती रही हैं। और वो अपनी हाजिर जवाबी और अपने कॉमिक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं।

सुनो, डिम्पल कपाड़िया की दो बेटियां हैं, रिंकी खन्ना, ट्विंकल खन्ना। और ट्विंकल खन्ना एक अभिनेत्री रही हैं, एक आध फिल्मों में रिंकी खन्ना भी नज़र आईं, और बॉलीवुड के जाने माने मशहूर अभिनेता से यानी अक्षय कुमार से ट्विंकल खन्ना का विवाह हुआ। डिम्पल कपाड़िया ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे राम लखन, क्रांतिवीर, जाबाज, बंटवारा, जख्मी औरत, अर्जुन, नरसिम्हा, प्रहार, दिल आशना है, मंजिल मंजिल जैसी फिल्मों में वो नज़र आई हैं अपने बेहतरीन किरदारों के और अपने ख़ास अभिनय क्षमता के साथ।

जिंदगी की तीसरी पारी में चरित्र अभिनेत्री के तौर पर कई फिल्मों में डिंपल कपाड़िया नजर आई हैं, जैसे दिल चाहता है, लक बाय चांस, वेलकम बैक, कॉकटेल, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, दबंग, तू झूठी मैं मक्कार और पठान जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं डिंपल कपाड़िया। फिल्मों के अलावा डिंपल वेब सीरीज में भी काम करती हैं और OTT पर इन्होंने सास बहू और फ्लेमिंगो, मर्डर मुबारक जैसी फिल्में भी की हैं।

तो दोस्तों, एक ग्लैमरस हीरोइन से गंभीर अभिनेत्री के रूप में स्थापित अभिनेत्री हैं डिंपल कपाड़िया, और आज भी वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, स्वस्थ नज़र आती हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं, और फिल्मों में भी वो सक्रिय हैं। तो एक बार फिर से हम उन्हें डिंपल कपाड़िया को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे भी अपने करियर में बढ़ती रहें, फिल्मों में नाम रोशन करती रहें।

सदाबहार फिल्म गीत श्रोता भी सुन रहे थे। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में संध्या 5 बजे हम फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे ये प्रसारण आकाशवाणी के पिथौरागढ़ केंद्र के साथ आकाशवाणी के बागेश्वर FM 101.5 MHz पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजने को है। अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहे।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
3: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
2: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर खेद व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रमीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

0: इस बीच तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफल रहने का आरोप लगाया है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी नेता सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित की थी। जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में भी अफगानिस्तान 112 रन ही बना सका। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के अभ्यास मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 146 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। अब सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शेल्फर और हमारे आज के कलाकार हैं भुवन चंद्र आर्या।

रहट की ताना कुल बुजो बाना कुल काम बजनो खजो मेर मनो जो निरनी जाना।

बजौन है जो जो निरनी जाना ये तू कलयुग की बान मेरी मनो मेरे मनो तेरी है रे छोसाना।

बेटा ये सरसिया प्यार गरीब है कि म्यार मानू प्यार में बुआ सेटा ये मेरा मानो कलयुग की बाना थे तो मेरा मान।

भुवन चंद्र आर्या व साथियों के गायक इसी कुमाऊनी लोकगीत के साथ हमारा आज का शैलस्वर कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है इस सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 8 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद और रात्रि 9:30 पर पब्लिक स्पीक, ये दोनों कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। आज शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। अब से कुछ ही देर बाद शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा समुद्र में बसा जीवन, विश्व समुद्र दिवस, इतिहास जगत और दिन विशेष से जानेंगे आज का इतिहास। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम उत्तरायण कार्यक्रम श्रोता सुनते हैं शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा विश्व समुद्र दिवस। शाम 6:41 पर सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। आज के कलाकार होंगे माधव डंगले और अनुराधा पौडवाल। शाम 7 बजे ग्रामीण श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम ग्राम जगत। इस कार्यक्रम में आज की बातें होंगी डिग्री मशरूम उत्पादन और लाभ। आज की सलाह किसान भाई सुनेंगे और चर्चा रहेगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ विषय पर। मिले जुले गीत गजलों का कार्यक्रम सबरस, माफ कीजिएगा, रात्रि 10 बजे सुनिएगा सुगम संगीत। फिल्म संगीत का लीजिएगा शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के तहत। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है प्रातः 5:53 पर। विचार बिंदु आप सुनेंगे कल प्रातः 6:05 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना सुनेगा कल प्रातः 6:10 पर। कल रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन दिल्ली केंद्र से रिले होगा और रात्रि 10 सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। कल संध्या 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड की प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। विविधा आप सुनेंगे कल प्रातः 6:50 पर। आज की बात का समय रहेगा कल प्रातः 6:05 पर। श्री रामचरितमानस कांड पाठ का भाग 119 सुनिएगा कल प्रातः 7:10 पर। हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, संचार माध्यमों में हिंदी भाषा की स्थिति। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ललित जोशी। समय रहेगा कल प्रातः 7:50 पर। शास्त्रीय संगीत सुनिएगा कल प्रातः 8:30 पर। खेती की बातें ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2:30 पर। महिलाएं सुनती है अपना कार्यक्रम अर्पण दोपहर 12:30 पर। कल इस कार्यक्रम में चर्चा रहेगी ऑनलाइन फ्रॉड से रहे सावधान, अल्पसंख्यकों हित योजना। साथ ही बहनें सुनेंगी साइबर फ्रॉड से बचाएं अपनी बचत विषय पर श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट शाखा प्रबंधक अनुभाग अधिकारी जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा से मंजू बोरा की बातचीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के 1302 विकरणी कल सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है शाम 5 हिंदी समाचारों के साथ, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं। कल शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी, जिसके अंतर्गत आज की बात का विषय रहेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की स्मार्ट तैयारी। व्यक्ति विशेष में सुनेंगे बिरसा मुंडा के बारे में और इतिहास के पन्नों से जानेंगे दिन विशेष का इतिहास। उत्तरायण कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा कल शाम 5:45 पर। कल इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा बिरसा मुंडा शहीदी दिवस। शाम 7 किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बातें का विषय रहेगा वर्षा आधारित खेती प्रणाली। सुनिएगा जैविक खेती के फायदे और मृदा क्षरण रोकने में कृषकों का योगदान विषय पर सी तिवारी से भेंटवार्ता। और साथ ही चर्चा का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। कल संध्या 6:41 पर सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत। कलाकार होंगे शर्मा बंधु और अनुराधा पौडवाल। लोकगीतों का लीजिएगा कल प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम लोक मंजिरी में। सुबह 11:30 पर लोकसुर में, दोपहर 2 उत्तराखंड के लोकगीत में और शाम 5:05 पर कार्यक्रम शेल्फर के तहत। कल सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस सबरंग। सुगम संगीत का प्रसारण समय रहेगा कल दोपहर 1:15 पर। रात्रि 8 सुनिएगा सबरस और रात्रि 9:30 पर गजलों का फरमाइश कार्यक्रम महफिल और शास्त्रीय संगीत सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। फिल्म संगीत का लीजिएगा कल सुबह 9:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम गीत निर्जर में। सुबह 10:35 पर सुरभार कार्यक्रम में। सुबह 11 सैनिक भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 12 मेरी पसंद। दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार। अपराह्न 3 सदाबहार फिल्म गीत। शाम 7:40 पर फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम इंद्रधनुष के अनुसार और रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत के तहत। ये थी आज के शीर्ष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज हम सब मना रहे हैं विश्व महासागर दिवस। इस अवसर पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे संसार की जो हमारी आंखों से भले ही दूर हो, लेकिन हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब हम समुद्र की बात करते हैं तो हमारी कल्पना में अथाह नीला जल, ऊंची लहरें, जहाज, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन समुद्र केवल पानी का विशाल भंडार नहीं, ये करोड़ों जीवों का घर है। एक ऐसा संसार जहां अनगिनत प्रजातियां जीवन जीती हैं, संघर्ष करती हैं और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखती हैं। दोस्तों, पृथ्वी के लगभग 71% सतह समुद्रों से ढकी हुई है। ये सिर्फ समुद्री जीवों का ही नहीं बल्कि मानव जीवन का आधार भी है। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा समुद्री पौधों और इनमें निवास करने वाले जीवों द्वारा निर्मित होता है। यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं उसमें समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। समुद्रों में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल व्हेल तक असंख्य जीव पाए जाते हैं। रंग बिरंगी मछलियाँ, डॉल्फिन, समुद्री कछुए, प्रवाल भित्तियाँ, कई समुद्री पौधे इस अद्भुत संसार का हिस्सा हैं। लेकिन दोस्तों, आज के जीवन संकट में है। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, जलवायु परिवर्तन समुद्री जीवों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। हर वर्ष लाखों टन प्लास्टिक कचरा समुद्रों में पहुंचता है, जिससे समुद्री जैव विविधता को बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों, ये समुद्र केवल जीव जंतुओं का घर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। पर्यटन और जलवायु संतुलन में समुद्रों की विशेष भूमिका है। यदि समुद्र स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। इसलिए दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने और अपने घर की तरह इसे स्वच्छ रखने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, ये तो थी कुछ सूक्ष्म जानकारी। अब कार्यक्रम में सुनाते हैं आपको प्रदूषण से प्रभावित होते समुद्र विषय पर हमारे युवा साथी काजल के साथ हुई ये भेंट वार्ता। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है काजल आपका हमारे कार्यक्रम युववाणी में।
1: जी धन्यवाद हिमानी।
0: तो सबसे पहले काजल, आप हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
1: तो मेरा नाम काजल विष्ट है और मैं भी अल्मोड़ा में रहती हूँ।
0: जी काजल, बिल्कुल। तो काजल, आप हमें बताइए कि जैसे कि समुद्रों को पृथ्वी का जीवनदाता कहा जाता है, ऐसे में जो बढ़ता प्रदूषण है वो समुद्रों के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है?
1: जी हिमानी, तो जो समुद्र है वो हमारे पृथ्वी का लगभग 71% भाग को ढकते हैं और जीवन के संतुलन को बनाए रखने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें ऑक्सीजन, भोजन और जलवायु संतुलन भी बनाए रखते हैं। लेकिन आज प्लास्टिक कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट और जो तेज रिसाव है वो समुद्रों को लगातार प्रदूषित कर रहा है। इससे समुद्री जल की गुणवत्ता खराब हो रही है और जो लाखों जीव है उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है वो कमजोर हो रहा है और जिससे हमारी पूरी पृथ्वी जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसलिए ये केवल समुद्र के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है।
0: जी काजल, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जो प्लास्टिक का प्रदूषण है, ये कचरा आज केवल समुद्रों तक नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। काजल, आप ये बताइए कि समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, आखिर ये समस्या जो है ये इतनी गंभीर क्यों मानी जा रही है?
1: जी, तो जो समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण है वो सबसे बड़ा प्रदूषक में से एक है, क्योंकि ये आसानी से नष्ट भी नहीं होता और वर्षों तक लाखों की टन में समुद्रों में प्लास्टिक पहुंच जाता है। तो जो समुद्र है वो समुद्री जीव अक्सर इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बड़े प्लास्टिक के टुकड़े धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता, खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। इससे केवल समुद्री जीवों को ही नहीं बल्कि मनुष्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक की बढ़ती मात्रा से जो समुद्री पर्यावरण है उस पर भी गंभीर और दीर्घकालिक संकट मच रहा है।
0: जी काजल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं उन्हें जब वो जब माइक्रो प्लास्टिक में चेंज होते हैं और जब समुद्री जीव उन्हें खाते हैं, जब मछलियाँ उन्हें खाती हैं, उसके बाद जब इंसान मछलियों का सेवन करते हैं तो ये धीरे धीरे ये पूरी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर मनुष्य के लिए भी उतना ही हानिकारक है।
1: जी
0: काजल, ये बताइए कि समुद्री प्रदूषण का असर केवल समुद्री जीवों तक सीमित नहीं रहता है, ये मानव जीवन और पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहा है, तो आपके इसको लेकर क्या विचार है?
1: जी मानी तो जो समुद्री प्रदूषण है उसका प्रभाव सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन पर भी पड़ता है। जब प्रदूषित समुद्री जीव हमारे भोजन का हिस्सा बनते हैं तो हानिकारक तत्व हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और प्रदूषण मछली पालन और पर्यटन को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिससे लाखों लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। इसके अलावा समुद्री जलवायु को भी संतुलित रखने में मदद करता है, और लेकिन जो प्रदूषण है इसकी क्षमता को कमजोर कर देता है और परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं और अधिक गंभीर हो चुकी हैं, और इसलिए समुद्री प्रदूषण एक वैश्विक चुनौती बन के सामने आई है।
0: जी बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण के बीच क्या संबंध है? ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है?
1: जो जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्रदूषण है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बढ़ते तापमान के कारण समुद्रों का जल गर्म हो रहा है, जिससे कि जो समुद्री जीव और प्रवाल भित्तियां हैं उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। दूसरी ओर प्रदूषण समुद्रों की प्राकृतिक क्षमता को भी कम कर देता है, जिससे वे कार्बन डाइऑक्साइड की कम मात्रा में अवशोषित कर पाते हैं। इससे वैश्विक तापमान बढ़ने की समस्या और गंभीर हो जाती है। इस प्रकार दोनों समस्याएं मिलकर पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। इसके समाधान के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
0: जी काजल, आप ये बताइए कि समुद्रों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं और समुद्री जैव विविधता पर इस प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है?
1: तो जो समुद्री प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री जीवों पर पड़ रहा है, प्लास्टिक और रसायन और तेल जैसे प्रदूषक अधिक, उससे प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहे हैं। कई जीव प्रदूषित पानी में जीवित नहीं रह पाते, जबकि कुछ की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। प्रवाल भित्तियां जिन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है वो भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। जैव विविधता की कमी आने से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी लगातार बिगड़ रहा है। यदि यही स्थिति जारी रही तो कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त भी हो सकती हैं।
0: जी काजल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इस प्रदूषण की वजह से जैव विविधता को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, और अगर इसे सही समय पर संतुलित न किया जाए तो कई प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती हैं। काजल, आप हमें ये भी बताइए कि जो समुद्री प्रदूषण की समस्या पर अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में इसके क्या-क्या दुष्परिणाम जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं?
1: तो हिमानी, यदि समुद्री प्रदूषण को नहीं रोका गया तो भविष्य में ये बहुत गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। समुद्री जीवों की संख्या बहुत तेजी से कम हो सकती है, नई प्रजातियां विलुप्त तो हो सकती हैं, और जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं वो भी प्रभावित होंगी, जिससे जो मानव जीवन है वो प्रभावित होगा। समुद्रों की प्राकृतिक स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन बनाए रखने की क्षमता भी कमजोर पड़ सकती है। इससे पर्यावरण पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को असंतुलित और प्रदूषित पृथ्वी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी से ठोस कदम उठाने बेहद जरूरी है।
0: जी काजल, ये एक बहुत ही गंभीर और शोचनीय विषय बनता जा रहा है। अंत में काजल, आप ये बताइए कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने में अपना क्या योगदान दे सकते हैं, और जो लोग समुद्र के किनारे भी नहीं रहते तो वो लोग इसमें अपना कोई योगदान कैसे कर सकते हैं?
1: तो हिमानी, समुद्रों की रक्षा केवल तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है। एक छात्र के रूप में हम सिंगल यूज प्लास्टिक को कम कर सकते हैं, कचरे को सही तरीके से निपटा सकते हैं, और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी फैला सकते हैं। नदियों के स्रोतों को साफ रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नदियां अंततः समुद्र में जाकर ही मिलती हैं। हम वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यक्रमों में भी भाग ले सकते हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियां आदतें मिलकर हमें बड़े बदलाव दे सकती हैं। समुद्रों को बचाने की शुरुआत हमेशा हमारे दैनिक जीवन से ही होती है।
0: जी काजल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि छोटी छोटी जिम्मेदार आदतें मिलकर बड़े बदलाव ला सकती हैं, और समुद्रों को बचाने की शुरुआत हमारे दैनिक जीवन से होगी। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना जितना हो सके उतना कम करें, क्योंकि समुद्र और प्रकृति हमसे कभी भी कुछ नहीं मांगते, फिर भी हमें जीवन, भोजन और संतुलित पर्यावरण प्रदान करते हैं। आज जरूरत है तो इस बात को समझने की कि उनकी इस अमूल्य देन का हमें सम्मान करना होगा, और प्रदूषण को कम करने की दिशा में अपने छोटे-छोटे लेकिन प्रभावी कदम उठाने होंगे। तो काजल, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपनी जानकारी साझा की।
1: जी मानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
5: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में इतिहास जगत की ओर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे एक ऐसी घटना की जिसने न केवल एक सम्राट का जीवन बदला बल्कि शासन, राजनीति और मानवता की दिशा को भी प्रभावित किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कलिंग युद्ध की, जिसने सम्राट अशोक का जीवन बदल दिया। दोस्तों, भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का विशेष स्थान है। इस साम्राज्य के सबसे महान शासकों में अशोक का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। वो राजा बिंदुसार और माता सुभद्रांगी के पुत्र थे। दोस्तों, सम्राट अशोक बहुत ही कुशल, साहसी और महत्वाकांक्षी शासक थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करना उनका एकमात्र लक्ष्य था। दोस्तों, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। आज का ओडिशा प्राचीन कलिंग का हिस्सा माना जाता है। अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। ये युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। इसमें लाखों लोग मारे गए और असंख्य परिवार उजड़ गए। युद्ध समाप्ति पर अशोक विजय तो हुए, लेकिन युद्ध भूमि पर फैली लाशें, घायल लोगों की पीड़ा और चारों ओर पसरा दुख देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा, और यही वो क्षण था जिसने उनकी जीवन की दिशा बदल दी। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति और मानवता का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया और अपने शासन में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और जनकल्याण को महत्व दिया। अनेक कल्याणकारी कार्य किए और अनेक स्थलों पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने दूत भेजे। दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा। प्रजा के कल्याण के लिए उन्होंने धम्म घोष की स्थापना की। अशोक के अभिलेखों में उन्हें प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अशोक के जीवन ने हमें ये संदेश दिया कि असली विजय दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि स्वयं को जानने, मानवता और प्रेम में है। तभी आज भी इतिहास उन्हें महान परोपकारी सम्राट के रूप में याद रखता है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं कार्यक्रम में आपका मनोरंजन और सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के इतिहास की तरफ और डालते हैं नज़र आज यानी 8 जून को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया था और शाहजहां को कैद किया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1786 में आइसक्रीम के लिए व्यावसायिक तौर पर पहला विज्ञापन बनाया गया था। वर्ष 1824 में आज के दिन नोह कुशिंग ने वॉशिंग मशीन का पेटेंट कराया था। वर्ष 1936 में आज के दिन भारत की सरकारी रेडियो सेवा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1940 में 93 तत्व नेपच्यूनियम की खोज की घोषणा की गई थी। आज के दिन वर्ष 1948 में देश की सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा शुरू की थी।

सेवा की ये पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। आज के दिन वर्ष 2002 में आतंकवादी संगठन अबू सैयाफ के विरुद्ध फिलीपीन के राष्ट्रपति ने अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नज़ारा फिर देखा गया था। आज के दिन वर्ष 2013 में अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने मारिया शारापोवा को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता था। चलिए दोस्तों, एक नज़र आजवे मुख्य व्यक्तियों के जन्म तथा निधन पर। वर्ष 1955 में ही आज के दिन वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के जन्मदाता टिम बर्नर्स ली का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1968 में कर्नाटक संगीत के गायक मदुराई मणि अय्यर का निधन हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं?

जिसका सही उत्तर है डी के शिव कुमार हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसका सही उत्तर हमें लिख भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश शहरी। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव तामुरिया। ग्रामनागर कोहरा से जामुन देवी साहू बेबी आराध्या साहू। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन अब्बासी। एस एम जावेद गुमला झारखंड से। चलिए दोस्तों कार्यक्रम युववाणी में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों कार्यक्रम युववाणी में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:45 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम उत्तरायण।

उत्तरायण कार्यक्रम सुनने सब श्रोतान के संतोष कुमार कोटलीक नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बातचीत, कुछ जानकारी और दगड़ पर कुछ कुमाऊनी और गढ़वाल लोकगीत आप लोग के लिए भी रह रहे हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ बातचीत आप लोगों ने कर लूँ और बात कर लूँ हमारे पृथ्वी सौंदर्य के बारे में। तो अगर हम देखूँ तो हमारे जो पृथ्वी छू सब ग्रहों में सब हुए सुंदर यह ग्रह छू। और अगर बात करूँ ये तीख प्रकृतिक बार में तो हमारे हरी भरी जंगो पेड़ पौध, हमारे धार गजहर नौ पहाड़ पर्वत मैदान सब जो छन बहुत मनमोहक छन। और यू सब हम पूर्व प्राणी जीवल जी का उपभोगक साधन छन। अगर हम हमर समुद्रक बात करूँ तो हमर पृथ्वी पर 70% हवेले ज़्यादा भाग समुद्र घिरी हुई छू। और दगड़ियों, अगर हम जहाँ हमार पर्वतों बटिक, हमार पहाड़ों बटिक, हमार पेड़ पौधों बटिक फैद उठाने लाग रही, उन्हें उपभोग करने लाग रही, वह समुद्र ले हमन के बहुत ज़्यादा मात्रा में मदद करूँ। अगर बात करूँ ऑक्सीजन के बारे में तो लगभग 50% ऑक्सीजन जो छू हम समुद्र बटिक लूनू। और दगड़ी एकल जी का आजक दिन यानी कि 8 जून का दिन जो छू विश्व समुद्र दिवसक रूप में मनाई जा, ताकि हम समुद्रक महत्व को समझ सको और उग कोई ल प्रकार नुकसान नहीं पहुँचो। दगड़ियों, हम देखने कि समुद्र में जो छू असंख्य जली जीव जंतुओं का घर छू। वहाँ बहुत से जीव जंतु जो छन पलनी समुद्र बितेर रूनी। और जहाँ हमन के

हर क्षेत्र में मदद करनी वह रोजगार साधन ले हमन जलीय जीव जंतुओं बटिक मिलूँ कि लेकिन उमटिक समुद्र बटिक माछ हम मछुआरे जो छन अपन दिनचर्या के चलूनी अपन रोजगार उमटिक चलूनी और फैद उमटिक कमूनी। ये के अलावा समुद्र जो छू सूरजक गर्मी के सोक बिर धरतीक तापमान के नियंत्रित करूँ। ये जय कारण हम देखनु कि समुद्र किनार जो शहर बसी हुई छन वतीक मौसम जो छू बारो मास एक जैसे रू ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म। समुद्र में बहुत प्रकारक जली पौंडल होनी जो कि पृथ्वी पर मौजूद पौंडुओं बेर ज़्यादा ऑक्सीजन

धरती के तापमान को नियंत्रित करो। ये जय कारण हम देखने कि समुद्र किनार जुले शहर बसी हुई छन वतीक मौसम जो छू बारो मास एक जैसे रू ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म। समुद्र में बहुत प्रकारक जली पौधे होनी जो कि पृथ्वी पर मौजूद पौधों बेर ज़्यादा ऑक्सीजन हम प्रदान करनी। और दगड़ियों सबो वे दुखक बात यो छू कि आज हम देखने लग रही बखतक दगड़ पर समुद्र दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते रहने लग रो कि लेकिन हर साल 80 टन हबीर ज़्यादा प्लास्टिक जो छू समुद्र में फेंकी जाने लग रो और तेलक रिसाव फैक्ट्रियों बटी निकलने वाले गंद पानी और जरूरत हवे ज़्यादा मछाक उपभोग करने लय समुद्र जी खतरे बनी हुई छू। दौड़ियों अगर हम एक बचावक बात करूँ तो हम लोगों के बहुत ज़्यादा समुद्र को उपभोग निकलन जैन हम देखने कि बहुमूल्य रत्न हमारे समुद्र में पाई जानी। और अगर हम अपन समुद्र को बचाना चाहूँ तो हम लोगों के वीक बचावल जिक काम करना पड़ल और उस समुद्र का हम लोगों को सुरक्षित धरना पड़ल जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग हम लोग नहीं करूँ या फिर कम है वे कम करूँ। और अगर हम लोग प्लास्टिक का उपभोग करने लग गई तो उगु सही तरीका वीक निस्तारण करूँ। समुद्र तटों को साफ धरूँ और कोई प्रकार की गंदगी में समुद्र हम नहीं फैलूँ। तो यू कुछ बातों को ध्यान धरवे हम लोग हमारे समुद्र को बचा सकनूँ और लोगों को जागरूक हम लोग कर सकनूँ कि कसिक हम लोग समुद्र को बचा सकनूँ। दगड़ियो आघिनला फूलों को बातचीत करूँ आओ कार्यक्रम में सुन लूँ शंकर उप्रेती गाई यो लोग गीत।

0: De उल्लेख हम सुन लग रची शंकर उप्रेति गाई यो लोग गीत।
1: क्या किसी कारणवश शिक्षा का सपना रह गया अधूरा? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS के साथ कीजिए पूरा, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है भारत सरकार द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा ओपन स्कूलिंग बोर्ड, जो आपको बेसिक शिक्षा, OBE, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के 103 से अधिक कोर्स के साथ साथ प्रशिक्षण देकर भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करता है। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए NIOS क्षेत्रीय केंद्र देहरादून से दूरभाष नंबर 01352532592 अथवा वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: दौड़े कार्यक्रम को बढ़ो आगिन और सुनो। हम आज एक बखत में हिंदी भाषा हमारे लिए कतु जरूरी छू, एक बार में एक हिंदी शिक्षिका दगा करी गई यो बातचीत।
2: श्रोताओं, जैसा हम जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमारे देश के अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, तो आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं हिंदी शिक्षिका गीता पंत जी से। गीता पंत जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय आप हमारे श्रोताओं को दीजिए।
3: मैं गीता, जैसा कि आपको पता ही चल चुका है, और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ और वहाँ मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ।
2: गीता जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि आपने हिंदी विषय ही क्यों चुना पढ़ाने के लिए?
3: बचपन से ही हम जिस भाषा को सुनते समझते आए हैं वो है हिंदी। पैदा होने के बाद बच्चा अपनी मातृभाषा ही सीखता है। मातृभाषा यानी माँ से जो भाषा वो सीखता है, और वो भाषा हमारी हिंदी है। तो इसीलिए हिंदी से मुझे लगाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसी भाषा ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और एक शिक्षिका बन पाई हूं।
2: गीता जी, आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति आज के समय में अगर हम लोग प्रेम जगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनके मन में हम लोग हिंदी भाषा के प्रति प्रेम जगा सकते हैं?
3: देखिए, कोई भी भाषा तभी बच्चे को अच्छी लगती है जब उसमें उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आए उसको सुनने में। तो हिंदी को भी जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय सीधे उनको नियम ना बताएं, व्याकरण ना समझाएं, बल्कि हम उनको पहले कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से विषय के साथ जोड़ें। अच्छी अच्छी कहानियाँ और कविताएँ सुनना हर बच्चे को अच्छा लगता है। तो अगर हम इन कविताओं

0: किताबों का, कहानियों का सहारा लेते हैं और फिर बच्चों को समझाना शुरू करते हैं तो निश्चय ही बच्चा इंटरेस्ट लेता है।
1: आज के समय में हम देखते हैं कि अधिकतर बच्चे हमारे इंग्लिश भाषी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ वो इंग्लिश भाषी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, वहीं हिंदी के प्रति उनका जो है रुझान कम हो रहा है और हिंदी को एक औपचारिक विषय के रूप में लेना पसंद करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
0: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हिंदी में नहीं लेते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि हिंदी के बिना उनका काम भी नहीं चलता, भले ही वो अंग्रेज़ी कितना ही सीख ले, लेकिन क्योंकि हम भारत देश के लोग हैं और हिंदी के बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता, हम हर जगह अंग्रेज़ी बोल के अपना काम नहीं चला सकते। अपने घर से ही हम शुरुआत करें तो हम कितना बोलते हैं अपने घर में अंग्रेज़ी, बिल्कुल भी नहीं, या फिर अपने शौक़ के लिए या अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो हमारा काम तो हिंदी भाषा ही चलाती है और वो केवल काम चलाओ भाषा नहीं है, हमारी पहचान है। तो हर बच्चे को अगर हम ये एहसास दिलाएं कि हिंदी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो बच्चे ज़रूर उसको समझेंगे। बस डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं और बच्चों को कितना इस बात का एहसास करा पाते हैं कि हिंदी कितनी ज़रूरी है।
1: हिंदी भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व रहता है। अगर हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं है तो हम लोग अच्छे वक्ता नहीं हैं। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए और अपने उच्चारण को शुद्ध करने के लिए किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए?
0: एक अच्छा वक्ता और शुद्ध उच्चारण करने के लिए ज़रूरी है कि हम हिंदी से जुड़ें। हिंदी से जुड़ने का मतलब ये है कि हम कोई ना कोई कहानी, कविता पढ़ें, सुनें, सुनाएं, और अगर हमें लिखने का शौक़ है तो ज़रूर अपने इस शौक़ को हम सीरियसली लें, लिखें, पढ़ें। और कोई भी चीज़ है वो अभ्यास से ही आती है। अगर हमारा उच्चारण अशुद्ध है तो अगर हम कोशिश करें, वो चाहे कोई भी भाषा हो, किसी भी वर्ड को, शब्द को सही उच्चारित करने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो जब हम अभ्यास करते हैं तो उच्चारण स्वतः ही अच्छा हो जाता है। और एक अच्छा वक्ता भी यही करता है, वो बार बार अपने आप को इम्प्रूव करता है, प्रैक्टिस करता है, और तभी उसको महारत हासिल होती है किसी भी चीज़ को बोलने में। तो ये चीज़ सभी के लिए लागू होती है, अभ्यास से ही हम हर चीज़ में निपुण होते हैं।
1: आज हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हर कोई अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेजी सिखाना चाहता है। जहाँ हम देखते हैं एक भाषा हम सीख रहे हैं लेकिन जो हमारी मातृभाषा है उसका प्रचलन कम भी हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
0: जो हमारी मातृभाषा है ना, उसके बगैर, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, हमारा काम चल ही नहीं सकता। तो प्रचलन तो हमारी हिंदी भाषा का कहीं कम नहीं हो रहा, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आज हिंदी को इतना ज़्यादा लोग अहमियत दे रहे हैं कि विदेशी तक हमारी भाषा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। बात अगर हम अंग्रेज़ी की करें तो निश्चय ही अंग्रेज़ी भाषा सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने देश में तो हम हिंदी से काम चला लेंगे, लेकिन अगर हमें विदेश में जाना है, किसी विदेशी से बातचीत करनी है, तो वहाँ अंग्रेज़ी भी ज़रूरी होती है। तो ज़रूर हम अंग्रेज़ी सीखें, लेकिन हिंदी भाषा के प्रति उदासीनता ठीक नहीं है। इस भाषा को हम बढ़ावा दें, हिंदी हमारे लिए मान सम्मान की बात है, तो हमारा मान सम्मान निश्चय ही बढ़ेगा अगर हम हिंदी की तरफ ध्यान देंगे, उसको बढ़ावा देंगे। और कौन नहीं चाहेगा अपनी मातृभाषा की प्रसिद्धि, कौन नहीं चाहेगा कि विश्व भर में वो जानी जाए, तो इसके प्रति उदासीनता ना रखते हुए हम इसको बढ़ावा दें और अधिक से अधिक बोलें, लोगों को प्रेरित करें हिंदी की तरफ और इसको पूरे विश्व की भाषा बनाएं।
1: हिंदी विषय की अगर हम बात करें तो आज के समय में स्कूली जो बच्चे हैं हिंदी को बड़ा कठिन विषय समझते हैं और लिखने में बहुत वर्तनीय अशुद्धियां उनकी होती हैं, तो इसका सुधार कैसे किया जाए?
0: देखिए, मैं तो कहती हूँ कि हिंदी के बराबर आसान भाषा कोई है ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इंग्लिश में हम जी ओ गो बोलते हैं लेकिन डी ओ डो नहीं बोलते, डू बोलते हैं, जबकि हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, या फिर जैसा लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही उच्चारित करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कन्फ्यूज़न वाला कि लिख कुछ और रहे हैं और दो वर्ड सेम जैसे लग रहे हैं, प्रोनंसिएशन उनका अलग अलग है, उच्चारण अलग अलग है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हिंदी के बराबर आसान भाषा कोई है ही नहीं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि हम जो वर्ड बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, उसको सही ढंग से

0: उच्चारण करना सीखें। अगर हम सही उच्चारण करते हैं तो निश्चय ही हम लिखेंगे भी सही, और लिखेंगे सही तो हमारी भाषा शुद्ध बनती जाएगी, कभी भी उसमें गलतियां होंगी नहीं।
1: आज हम देखते हैं, अगर हिंदी की इतनी महत्ता है और ये माना भी गया है बहुत प्राचीन समय से हिंदी को बहुत ज़्यादा मान्यता मिली है, आज के समय में अगर बात करें तो बच्चे अपना भविष्य कैसे इसमें उज्जवल कर सकते हैं हिंदी विषय को लेकर?
0: हिंदी तो मेरी तो सबसे प्रिय भाषा है और होनी भी चाहिए हर भारतीय की। और हिंदी में जहाँ तक अपने भविष्य की बात है, हिंदी में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें बच्चा आगे बढ़ सकता है। वो चाहे तो कवि बन सकता है, वो चाहे तो कहानीकार बन सकता है, चाहे तो कहीं अध्यापक बन सकता है, कहीं प्रोफेसर बन सकता है, चाहे तो ट्रांसलेटर बन सकता है। और भी कई सारे फील्ड हैं जिनमें बच्चा जा सकता है और हिंदी भाषा को सम्मान दिलाते हुए खुद भी सम्मान पा सकता है।
1: गीता जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई और हमारे सुनने वाले श्रोता आपकी बातों से जरूर प्रेरित होंगे। अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: हिंदी पर सदा सबको मान रहे, हर कोई इसका सम्मान करे और हिंदी बने जन जन की भाषा, यही है मेरा सबके लिए संदेश।
1: बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया और हमारे सुनने वाले श्रोता आपकी बातों से प्रेरित होंगे, कुछ न कुछ उनको फायदा होगा। गीता जी, आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: देखो अल्लाह हम सुन लग रहा छी हमार जीवन में या वर्तमान वक्त में हिंदी हमल जी कतु जरूरी छू। एक बार में एक हिंदी शिक्षिका दगर करी गई और बातचीत और अब कार्यक्रम को बढ़नु आगिन और सुनू सुरेश प्रसाद गई यह लोक गीत।

0: प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: दगड़ियों, हम हमारे पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य बात करूं तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र जो प्राकृतिक सौंदर्य छो वो हमारे मन के बहुत हरणी बाग हूँ। और आजकल बखत का अगर हम बात करूं, गर्मी के मौसम का अगर बात करूं, तो यो बखत पा तो ये मौसम जो छू बहुत भल हूँ। जहाँ हम मैदानी इलाका बात करूँ वहाँ जहाँ गर्मी लोग परेशान छन, लू चलने जहाँ परेशान छन, वह हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी ठंडी हवा और ठंड पानी हम लोग उनको मिलने लग रहे हैं। और दौड़ियों, हमारे प्राकृतिक सौंदर्य का कारण हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत से पर्यटक उन्हीं और यतिक सुंदरता का गुणगान उन पूर्व विश्व में करनी दौड़ियों। लेकिन हम देखो कि हम मन की अपन स्वार्थक जिक अपन उपयोग जिक कहने का प्रकृति दगा छेड़छाड़ करनु और जहाँ हम उनको नुकसान पहुँचाने लग रही वह वीक सुंदरता के लिए हम लोग कम करने लग रही। हम देखने कि अजाल गर्मी के मौसम छू और गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लागण बहुत आम बात छू। दगड़ियों, हम देखने कि हम लोग अपने स्वार्थक लिजिक जंगलों में आग लगनु कथक है। हम देखने कि हमारे किसान बहनी सोचनी कि हम अगर जंगलों में आग लगा जुला तो उन्हीं वाल बखत में जो छू भल घा वो जंगों में हल और वील उनके फैद हल तभी आप लोग उनके फैद तो हल, लेकिन जंगों में आग लागण पूर्व प्राणी समाज का नुकसान पहुँचू। जंगों में बहुत से पशु पक्षी रहनी, अगर जंगों में आग लाग गयो तो ऊँ जलबेर भस्म आ जानी, नष्ट आ जानी। ये के अलावा बहुत से पेड़ पौध हमारे जल जानी, जेल की हमारे पर्यावरण प्रदूषित हूँ। दौड़ियो, हम लोग उनको कोई लेस काम नहीं करना चैन जेल की जंगों में आग लागूँ। जैसे कि बहुत से लोग यह सुनी कि बीड़ी सिगरेट पीनी और जलती हुई बीड़ी सिगरेट या माचिस जो छू उगू जंगों में छोड़ देनी। ये के अलावा खेतों सफाई साफ सफाई करने वाले हमारे किसान भाई बहनी अपन खेतों कान मुनन के जलूनी वीक बाद वो जलते हुए आग छोड़ वेर नहीं जानी जो कि जंगों में आग लगने का कारण है सकूँ। ये के अलावा जैक गाँव या घर जंगों नज़दीक छन वो की करनी कि कूड़ उन्होंने अगर जलाई तो उगुले वो छोड़ देनी। यह प्रकार जंगों में आग लग सकूँ और दगड़ियों, यह प्रकार जब आग लागूँ तो बहुत नुकसान हमार जंगे उगो हूँ। जहाँ हरी भरी पहाड़ देखने जी पर्यटन या उन्हीं वह उन्होंने जली हुई काऊ पहाड़ देखना तो उन्हीं तो जैल की हमार प्राकृतिक सौंदर्य जो पूरी तरीके नष्ट रह जा। तो ये लीजिए हम लोग उनके कोई ले ऐसा काम नहीं करना चाहें जेल की जंगों में आग लागू। दगड़ियों, अगर कहीं आग लागी हो तो बिना देरी करिए आप वो आग बुझाने में मदद करन चाहें। और ये के अलावा अपने नज़दीक में जुले वन विभाग कर्मी छन या वन विभाग छन वह उनको सूचना देना चाहें और जल्दी से जल्दी वो आग बुझाने की कोशिश करन चाहें। आगे आप लोगों का बातचीत करो आओ कार्यक्रम में सुन लूँ देवेंद्र प्रसाद चमोली गाई यह गढ़वाल लोकगीत।

0: खुश है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को

0: दौड़े लम सुनना कराची देवन प्रसाद चमोली गई युगल वालों गीत।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दगड़ियो, गर्मी मौसम हम बात करने लग रहा छी, और यो मौसम में हम देख लू की बहुत से लोग जो छन अपनो घर बेटी के दूर घूमन के जानी, और यह बहुत जरूरी लगे कि लेकिन हम देखनु कि आजक वक्त में हर मनखी जो छू बहुत ज़्यादा तनाव में रहूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा काम करूँ, और अगर यह मैं वो 2-4 दिन घूमने तो नहीं गई तो बहुत आराम को मिलूँ और बहुत मानसिक आराम को मिलूँ, तो यह हमारे जीवन का हिस्सा छू और जानने चाहे भल बात छू। लेकिन अगर हम लोग कहीं लोग घूमने जा रही तो पहले हम लोगों का अपन सुरक्षा का ध्यान धरना चाहिए। हम देखूँ कि आज कोई ले मनखी कहीं लोग घूमने जा रहा हो, अगर वो गाड़ी ले जाने लग रहा हो तो कई बार क्यों हूँ कि थोड़े से लापरवाही उन्हें जी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जी। कई बार तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के कारण गाड़ी जो छू दुर्घटनाग्रस्त है जी, जमें कि बहुत भारी नुकसान उन्हें उठान पड़ो। ये के अलावा अगर कहीं पहाड़ी में घूमने जाने लग रहा है तो कोई भी प्रकार की घटना लापरवाही कारण हुआ है सकी। ये के अलावा जो सबो हबे महत्वपूर्ण बात छो वही अच्छो कि गर्मी के मौसम में अगर हम लोग नदी किनारे कहीं घूम जाने लग रही तो नदी किनारे पर पानी देख बेर और तेज गर्मी देख बेर हम लोग नदी में उतर जानू और नहाने लग जानू। और हम देखूँ कि अक्सर युवाओं तो यह बात हम देखूँ कि बहुत से लोग नदी में नाते नाते इतु लापरवाह जानी कि उन यूँ भूल जानी कि नदी का

कतुक गहरी पाण में हमल जान चें और कातल हमल जी खतर जो छू वो है सकू। ये वजल बहुत से नानतिन जो छन युवा जो छन नदी में डूब जानी और डूब देर अपन जीवन के समाप्त कर देनी। तो दगड़ियों अपन कै ल घूमने जा लाग रहा था कोई ल काम करण लाग रहा था तो अपन सुरक्षा के ध्यान में धरबेर आपू कोई ल कदम उठाओ आपू ले सुरक्षित रहो और अपन परिवार वालों ले सुरक्षित धरो। ये कल जी कही छू कि जान छू तो जहान छू। तो दगड़ियों आगिन लापू लोगों दगा बातचीत करूँ आओ कार्यक्रम में सुन लूँ महिपाल सिंह मेहता और लता तिवारी गाई ये लोग गीत।

నిచెని పాప నిచెనా నిచెన కకా కఖి ఇజ్ నిచెని బాబ నిచెన.

दौड़ू महिपाल सिंह मेहता और लता तिवारी गाई है लोकगीत कदगड़ा हमार आजक उत्तरायण कार्यक्रम ए तिगणी संपन्न करना बखत हगो ये कदगड़ा पर दौड़ू संतोष कुमार कोटली की दियो आज्ञा नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम उत्तरायण। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ देर बाद उत्तराखंड की समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, रविवारों से पहले आपन सुनी मीना कुमोला का स्वर में सुंदर सी गड़बड़ गीत, और उम्मीद कर दो गीत आपने पसंद आवल। श्रोताओं, अब भगत हो जा उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों को, तो घड़े के में आप सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल, और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
3: पापा, लाइए 3,000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले में आपदा से क्षतिग्रस्त गस्ती बैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और केम्प्टी टिहरी मार्ग पर चल रहे सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। और गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू हो गया है। इसकी औपचारिक शुरुआत लोक भवन नैनीताल में हुई, जहां ERO द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को गणना फॉर्म सौंपा गया। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ BVRC पुरुषोत्तम ने गणना फॉर्म सौंपा। SIR के तहत 7 जुलाई तक BLO प्रत्येक मतदान क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में नए पात्र मतदाताओं को शामिल करने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने और प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र की जाएगी। इस चरण में मतदाताओं से किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाएंगे। वहीं पौड़ी की जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि SIR का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध, त्रुटि रहित और अद्यतन बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
8: आज 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारे जो BLOs हैं वो घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स का भी वितरण करेंगे और इसको कलेक्ट भी करेंगे। और मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, BLO से भी निवेदन रहेगा कि इसको पूरी सतर्कता से इस काम को करें, और लोगों से भी अपील रहेगी कि वो BLOs का हर चीज में सहयोग करें। और इसके साथ में ही हम लोग लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोग हर मंडे को यहाँ पे बैठक करते हैं और तहसीलों में हर ट्यूजडे को ये बैठक की जाती है।
7: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
9: बैठक में परिवहन, ऊर्जा, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन और अन्य विभागों की 6,940 करोड़ रुपए की 12 प्रमुख परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। श्री धामी ने अधिकारी

0: को इन परियोजनाओं के कार्यों में और तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह और मुख्य सचिव स्तर पर 10 दिनों में इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर 50% तक कार्य हो चुका है उन्हें 15 अक्टूबर तक पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भूमि हस्तांतरण, वन स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही जिला स्तर पर लंबित प्रकरणों की व्यक्तिगत निगरानी कर उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। श्री धामी ने अधिकारियों को प्रगति पोर्टल को प्रभावी निगरानी तंत्र के रूप में उपयोग करते हुए प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा करने और लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविन्द्र सिंह।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून जिले के नागथात में आयोजित जौनसार बावर लोक सांस्कृतिक महोत्सव व क्रीड़ा समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय केदार सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, पुल, पेयजल और विद्यालय से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि जौनसार भाबर प्राकृतिक सुंदरता के साथ अपनी मेहनतकश, सरल और स्वाभिमानी जनता के लिए जाना जाता है। यहाँ की लोक संस्कृति एकता की भावना को बढ़ावा एवं भविष्य की पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा और समग्र विकास के लिए कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले में पिछले साल आपदा से क्षतिग्रस्त चारधाम यात्रा मार्ग के गस्ती बैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चल रहे सुधार व पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चारधाम यात्रा मार्ग यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसात के मौसम को देखते हुए संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए ताकि यात्रा मार्ग पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग की बैठक ली। बैठक में चारधाम यात्रा मार्गों पर खाद्य सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण और प्रवर्तन संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। आयुक्त ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा मार्गों पर स्थित सभी दुकानों, होटल ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए ताकि यात्रियों को निर्धारित दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकतम खुदरा मूल्य या निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूलने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
3: जो सैंपल्स हैं खाद्य पदार्थों के, उनको कलेक्ट करने, साफ सफाई देखने, हाइजीन मेंटेन करने के लिए जितने भी ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं और इस तरह के फल फ्रूट सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो लोग इसको देखें और गुणवत्तापूर्ण सामान जो है चारधाम यात्रियों को मिले, ये सुनिश्चित करने का निर्देश मैंने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया है। इसके अलावा जो है कुछ जगहों से ये शिकायत प्राप्त हुई कि दुकानदार जो है रेट ज्यादा ले रहे हैं खाद्य पदार्थों के, उसके संबंध में भी मैंने तत्काल जांच करके कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
1: मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर SN पांडे ने आज पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज और जिला प्रशासन के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास, आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य व सड़क और अन्य जनहित से जुड़े विषयों पर सुझाव लिए। डॉक्टर पांडे ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास का

0: कार्यों की वास्तविक स्थिति का स्थलीय स्तर पर आकलन करते हुए जन सामान्य की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
1: आज जो है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिससे कि जन सामान्य की क्या समस्याएं हैं, पब्लिक काज के क्या इशूज हैं और किस प्रकार से विभाग कार्य कर रहा है और शासन स्तर की क्या इशूज हैं जिससे कि जनपदों में कार्य करने में कठिनाइयां हो रही हैं, उसको समझने के बाद और जो शासन स्तर से उसको दूर करने का प्रयास है वो उसी कड़ी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है सभी विभागों को कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टिकरण, उस पर सारे विभाग के अधिकारी कार्य करें।
0: हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने जिले में कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं को आज सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने सम्मानित कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता सुधारने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई तकनीक और स्वीकृत बजट के समन्वय से हरिद्वार जिला पशुपालन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर आरएस नेगी ने बताया कि जिले में पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक को व्यापक स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से उच्च नस्ल और अधिक उत्पादकता वाले पशुओं का संवर्धन संभव होगा, जिससे पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में प्रगति पोर्टल के माध्यम से राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिले में आपदा से क्षतिग्रस्त गस्ती बैंड के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चल रहे सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों का निरीक्षण किया और गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सैंपलिंग अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

0: और माधव पडवाल और बाबूला मेहता के गाय इसी भक्ति वंदन के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 6:50 होने को है। कुछ ही देर में गढ़वाली में उत्तराखंड की प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से रिले होंगे।
1: आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी मी नेहा। पहली मुख्य समाचार। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घरों घरों जाके गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन कार्य शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिला में गस्ती बैंक का समणी। राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी मार्ग पर चलन वाला सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों को निरीक्षण कैरी। देहरादून जिला का कालसी विकास खंड में महिलाओं की तरफ बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को सफल मॉडल बनी की उभरी। और हरिद्वार जिला में कृत्रिम गर्भाधान का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कनवाला 12 कार्यकर्ताओं ते सम्मानित करे गए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज बटी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR का तहत बूथ लेवल अधिकारियों VLO द्वारा घरों घरों जाके गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन कार्य शुरू हुए गए। ये की औपचारिक शुरुआत लोक भवन नैनीताल में हुए, जख ERO द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ते गणना फॉर्म सौंपे गए। वकी सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ते मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने गणना फॉर्म सौंपे। SIR का तहत 7 जुलाई तक BLO प्रत्येक मतदान क्षेत्र में घरों घरों जाके मतदाताओं से संपर्क करला और गणना प्रपत्र वितरित करला। ये दौरान मतदाता सूची में नया पात्र मतदाताओं ते शामिल कन मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को नौ हटौन और प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन का वास्ता आवश्यक जानकारी एकत्र करे जाली। ये चरण में मतदाताओं से कै भी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं करे जाला। वखी पौड़ी की जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति S. भदौरियन बते कि SIR को उद्देश्य निर्वाचक नामावली ते शुद्ध त्रुटि रहित और अद्यतन बनोच ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक अपना मताधिकार को प्रयोग कर सको।
2: आज 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारे जो BLOs हैं वो घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स का भी वितरण करेंगे और इसको कलेक्ट भी करेंगे। और मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, BLOs से भी निवेदन रहेगा कि इसको पूरी सतर्कता से इस काम को करें और लोगों से भी अपील रहेगी कि वो BLOs का हर चीज़ में सहयोग करें। और इसके साथ में ही हम लोग लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोग हर मंडे को यहाँ पे बैठक करते हैं। तहसीलों में हर ट्यूजडे को ये बैठक की जाती है।
1: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिला में पिछला साल आपदा से क्षतिग्रस्त चारधाम यात्रा मार्ग का गस्ती बैंड का समणी राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी मार्ग पर चलन वाला सुधार व पुनर्स्थापना कार्यों को निरीक्षण करी। उन मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकारियों बटी कार्यों की प्रगति की जानकारी लूंदा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को जायजा लीन। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों ते निर्देशित कैरी की चारधाम यात्रा मार्ग यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इले सभी कार्यों ते निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता का दगड़ा जल्दी पूरा करे जालो। उन बोली कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली और सुदृढ़ीकरण का वास्ता लगातार कार्य करने च उन अधिकारियों ते निर्देश देने की बरसात का मौसम ते देखी कि संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखे जाली और सुरक्षा उपायों ते प्राथमिकता दिए जाली ताकि यात्रा मार्ग पर कै भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री सचिव डॉक्टर SN पांडे ने आज पिथौरागढ़ में जन प्रतिनिधियों नागरिक समाज और जिला प्रशासन का दगड़ा संवाद करी। ये दौरान उन जिला का विकास आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण पर्यटन शिक्षा स्वास्थ्य व सड़क और अन्य जनहित से जुड़े विषय पर सुझाव लेने। डॉक्टर पांडे

0: बोले कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को स्थलीय स्तर पर आकलन करके जन सामान्य की समस्याओं को प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना।
1: आज जो है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिससे कि जन सामान्य की क्या समस्याएं हैं, पब्लिक काज के क्या इशूज हैं और किस प्रकार से विभाग कार्य कर रहा है और शासन स्तर की क्या इशूज हैं जिससे कि जनपदों में कार्य करने में कठिनाइयां हो रही हैं, उसको समझने के बाद और जो शासन स्तर से उसको दूर करने का प्रयास है वो उसी कड़ी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है सभी विभागों को कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टिकरण, उस पर सारे विभाग के अधिकारी कार्य करें।
0: उन बोले कि शासन जनता का सुझाव और अपेक्षाओं ते गंभीरता से लेके कार्य करनु च और प्राप्त सुझावों ते नीति निर्माण और विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन में समाहित किए जानु।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जानु जे। ताजा समाचारों खुड़ी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: देहरादून जिला में कालसे विकास खंड का हरिपुर गांव में महिलाओं की तरफ से संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का सफल मॉडल बने के उभरी। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीप का तहत 2024 में स्थापित ई यूनिट ने सैकड़ों महिलाओं ते आर्थिक रूप से मजबूत बनोण में महत्वपूर्ण भूमिका निभे। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन की तरफ बटी स्थापित ई यूनिट में सरसों तेल का उत्पादन करे जानु च। रीप की जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्तन बताए कि ई यूनिट से हर महीना 70,000 रुपए की आय होनी च और जबकि स्थापना का बाद से अब तक 24 से 25 लाख रुपए मूल्य को सरसों तेल बेचे भी गए। ये का अलावा 4 से 5 महिलाओं ते प्रत्यक्ष रोजगार भी मिली। उन बोली कि यह यूनिट ग्रामीण महिलाओं ते आत्मनिर्भर बनोण की दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण छ।
3: कालसी ब्लॉक की CLF है हमारी विकास महिला, उसको CBO लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो एक लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपये तक का सेल्स उनका प्रतिमाह हो रहा है और इसमें CLF से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं। मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम कर रही और इस तरह से उनका आय में वृद्धि हो रही है। इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं हमारे हॉट और कोल्ड प्रेस, इसमें इनकी सेल्स है, HOH में जा रहा है, हमारा एक नीचे आउटलेट खुला है वहां जा रहा है, लोकल लोगों को भी केटर हो रहा है, प्लस हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसकी की जा रही है।
0: समूह की सदस्य रीना चौहान बोली कि आज महिलाएं उत्पादन से लेके विपणन तक की जिम्मेदारी संभालनी छिन और आर्थिक रूप से सशक्त बननी छिन।
4: विकास महिला क्लस्टर का NRLM के द्वारा गठन किया गया जिसमें कि 120 समूह है, 764 महिलाएं हैं और तत्पश्चात विकास महिला CLF का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई जिसके द्वारा कि सरसों तेल यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जिला प्रशासन का, NRLM का और रीप का, जिन्होंने कि हमार को इस काम करने का अवसर प्राप्त हुआ।
0: हरिद्वार का मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिशन जिला में कृत्रिम गर्भाधान का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाला 12 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं ते आज सम्मानित करे। ये अवसर पर उन सम्मानित कार्यकर्ताओं ते बधे द्यूदा दौ बोली कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन की गुणवत्ता सुधन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण च। उन विश्वास व्यक्त करी कि नई तकनीकी और स्वीकृत बजट का समन्वय से हरिद्वार जिला पशुपालन का क्षेत्र में नई ऊंचाई प्राप्त करनु च। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर RS नेगिन बताए कि जिला में पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता बढ़ोण खुणी आधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक ते व्यापक स्तर पर लागू करे जानु च। उन बोले कि इन तकनीकी से उच्च नस्ल और अधिक उत्पादकता वाला पशुओं को संवर्धन संभव होलू, जैसे पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होली। पौड़ी जिला में भू कानून का प्रभावी अनुपालन का वास्ता प्रशासन की तरफ बटी लगातार कार्रवाई करे जाने चे। ये क्रम में धुमाकोट तहसील का ग्राम लुइठा मल्ला में भू कानून का उल्लंघन से जुड़िया एक प्रकरण में जिला प्रशासन ने लगभग 27 नाली भूमि ते राज्य सरकार में निहित करी के वे पर कब्जा ले आली। धुमाकोट में उप जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित प्रकरण में भैर का लोगों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदने को मामला संज्ञान में आया छो। मामला की जांच राजस्व अभिलेखों का परीक्षण और जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने का बाद नियमानुसार कार्रवाई करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घरों घरों जाकर गणना प्रपत्रों को वितरण और सत्यापन कार्य शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिहरी जिला में गस्त बैंड का समीप राष्ट्रीय राजमार्ग और कैंपटी टिहरी मार्ग पर चलन वाला सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कार्यों को निरीक्षण करी। देहरादून जिला का कालसी विकास खंड में महिलाओं की तरफ बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को सफल मॉडल बने की उभरी। और हरिद्वार जिला में कृत्रिम गर्भाधान का क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कन वाला 12 कार्यकर्ताओं ते सम्मानित करे गए। ये का दगड़ा ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यु अंक समाप्त हुए। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ज्ञान जगत कार्यक्रम सोनी सब श्रोतान के रमा शंकर नमस्कार श्रोता स्वागत छो कार्यक्रम ग्राम जगत में। तो दगड़ियों हम उम्मीद करूँ कि जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन लागरी सब राजी खुशी होनल और अपन गांव घर में रह बेर खेत पाती काम को करण लागनल। दगड़ियों जरूरी ले छू खेत पाती काम करण किले कि खेत छू तो हम छू और हमर लीजिए खेत कतुक जरूरी ही। यह बात का हम इसी समझ सकनू कि हम जो आवाज़ तुमको हमें सुनाई देना लग रहा है यह आवाज़ पिछड़े खेती को सहयोग छो कि खेत हमको नाज दें साग सब्जी दें फल प्रकार पोषक तत्व दी तब जाबे मनखे जीवन बनू और मनखे हिष्ट पुष्ट बनू। हिष्ट पुष्ट बनने दगड़ दगड़े तब वो जीवन में राजी खुशी हर काम को कर पा। अब तुगड़ियों हिष्ट पुष्ट होने की जरूरी थी कि हम फल किस्मक साग सब्जी खो नाच पान खो भल प्रकार फल फ्रूट खो तब हमार स्वास्थ्य भल रहल हमार जीवन भल चल। और दगड़ियों पहाड़क क्षेत्र में हम देखलूँ कि खेत पाती काम में काफ़ी जटिल दिक्कत छे चुनौती छे और उतु नाच पायण यून जतु नाच पायण यहाँ मनखी को चाहिए। तो यह लीजिए यहाँ पर मनखी बिहार नहीं जानी या हम यह कह सकूँ कि जो जो मनखी पहाड़ में बिहार जान लग रही मैदानी क्षेत्रों तरफ जान लग रही तो मैदानी क्षेत्रों में जो किसान खेत पाती काम करनी उनर खेत पर यह बात तक दबाव पड़ लग रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज को पैद करी जाओ के लिए कि पहाड़ पे जो मन की काम को छोड़ बन है गई अनाज तो उनको चाहिए रोट तो उनको चाहिए नहीं तो वो चैने लीजिए उनको जो गेहूँ बाजार पर खरीदना पड़ो वो गेहूँ को पैद करने के लिए पहाड़ी मैदानी क्षेत्र किसानों पर काफ़ी दबाव रही। तगड़ियों तो यह बातों के लीजिए हम यह देख सकते हैं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में अगर कोई इलाके यश से या कोई क्षेत्र यश से जहाँ वो फसल नहीं हंस सकें जो हमको चाहिए तो हम के लिए ना यश प्रकार योजना बनूँ कि हम वो फसल उगा सकूँ जो फसल वहाँ आसानी ले सकें या हम यह कह सकूँ कि कुछ अतिरिक्त आय करते हुए हम यश काम करूँ जैल कि हम अपन आय को बढ़ा सकूँ और आय बढ़ने के बाद जो उत्पादन हम

करो, उके बाजार में बेच सको और बेचने के बाद अपना आजीविका को सुधार कर सको। तो दगड़ियों ऐसा एक फसल छो, ऐसा एक साग सब्जी छो जका हम जाननू चांग। दगड़ियों चांग मने जका हम मशरूम कुनू। चांगों की इतिहास मानव सभ्यता दग बरसों बती सदियों बती जुड़ी हुई छो। किले की पहली चांग जंगली चांग के मनखी खाँची और वो मनखी समाज लोगों को यह बात पछाण हो ची कि कोवाल मशरूम खाई जा, कोवाल मशरूम नहीं खाई जा। किले की जंगली क्षेत्र में उगने वाला मशरूम जहरीला होनी भल्ला होनी। तो कई प्रकार मशरूम हम उगा सकनू, वही प्रकार मशरूम में जो आज वक्त में सबसे ज़्यादा उगाई जा और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तरीका उगाने के बाद वो उत्पादन ला करी जान लग रहा कुछ ढींगरी मशरूम। और दगड़ियों ढींगरी मशरूम के सबसे जरूरी बात यह कि मशरूम चाहे कोयल छो वो मशरूम को उगाने के लिए सबसे भल बात तो यह कि कोयल किसान के पास अपन गढ़ हूँ जोड़ी ना। कई बार किसान को नहीं हम के खेत पैत को हम पास जमीन ना या मैं अगर तुम पास एक घर छो वो घर कोयल कम्र में तुम ये मशरूम उत्पादन कर सकता। पर मशरूम उत्पादन करने के लिए चतुर्क या स्वर्ण में सरल लागू ना वे लीजिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ो, मेहनत करना पड़े। सबसे पहले तो हमको यह बात प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि मशरूम उत्पादन कैसे करी जाए। तो टाइम टाइम पर सरकार द्वारा किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार का कैंप लगाए जाने, इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करी जानी जो कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित करी जानी, कृषि विभाग द्वारा आयोजित करी जानी। तो यह तो हमको टाइम टाइम पर पत्र करना पड़ा कि कहाँ प्रशिक्षण चलने लग रहा। और ग्राम सभा में चयनित सदस्य या ग्राम सभा में चयनित किसान आपको नाम दे सकनी, नाम दे वहाँ प्रशिक्षण ले सकनी। वो जो प्रशिक्षण दे जाए, ट्रेनिंग दे जाए, वो मशरूमक विशेषज्ञ जो होनी, कृषि विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक होनी उन द्वारा दे जा। तो उनको सही तरीका बताने कि मशरूम के छू कैसी को उगाई जा और घर में उगण लीजिए के काम हमको करना पड़ो। तो इनमें जो तीन तीन मुख्य बात से एक तो इनमें साफ सफाई बहुत ध्यान रखना पड़ो और दूसरा यह कि इनमें जो वैज्ञानिक विधि उगाई जाए तो उनमें पॉलीथीन ना चाहिए, उनमें भूस ला चाहूँ जो घर में हमारे भूस हूँ वो चाहूँ। अभी के अलावा उके कमरे के साफ सुथरा धरण उमें और सिंचाई को वह खत्म करना चाहिए, कतु दिन में तैयार हूँ, यह सब जानकारी हमको प्रशिक्षण द्वारा मिले। तो प्रशिक्षण जरूर करना चाहिए। और हम तो यह कुल कि हमारे यहाँ पहाड़ जो जलवायु छू या जो पहाड़ तापमान छू वो तो भल छू कि यहाँ मशरूम बहुत बढ़िया तरीका उगाया जा सकूँ। और यह काश्तकारों के लिए तो भल काम छू कि इनमें बहुत ज़्यादा उस प्रकार की मेहनत नहीं छू जस हमको देखने कि गढ़ में जाओ खोदो बीज बो फिर दियो के इंतजार करो, यह सब झंझट हमें बचना बच सकता। यह काम को करिए इनमें मेहनत और थोड़ा सीखने में टाइम तो लागू है। अगर ए बड़े काम हम सीखा और सही तरीके करने लग रही तो बाजार में हम फल इनकम हमको मिल सकें।

0: श्रोता की विनम्र अभिनय समय गीत अवलोकन लक्ष्य। अब कार्यक्रम में सुनू धानिक बिनौर में के काम हसकूँ और यह काम को करने वाले महिला काश्तकार पुष्पा बरदगर यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज हम बुझ रहे सोमेश्वर घाटी में और यहाँ गड़नक बीच में कुछ सैनी काश्तकार खेतपाती काम करने लाग रही। इन्हें तक बातचीत करनू, सबसे पहले सोनी वालों का अपन परिचय बताओ। के नाम छो तुम्हारा?
2: मेरा नाम पुष्पा बोरा छो, गांव नाम विधुना भानाराज सोमेश्वर।
1: तो के काम हो रहा तुम्हारे गढ़ में, तुम के काम करने लाग रहे हो?
2: एल हम बिनौर चानिया।
1: बिनौर क्यों हो?
2: धानिया रुपाई हूँ, बाद में दो महीने तक बिनौर धनु, फिर तीसरे महीने में पहले निराई करनु, फिर हम खेत में रोपाई लगनु।
1: अच्छा, मतलब की धान एक रुपाई करना हमें पहले जो रुपाई लीजिए धान उनको तैयार करी जा बिनौर में।
2: हाँ,
1: ये बिनौर तैयार कैसी करी जा, मतलब सब पहले के गछा बिनौर तैयार करना जी?
2: पहले धान लियोनु गढ़ में, पहले बानो, फिर भी बोनो, वह बाद छापनो।
1: क्या छाप छा?
2: मो को मोल छापने को, उसका माटल छापने फुटावल।
1: तो ये बिनौर क्या महीन तैयार करी जा?
2: बिनौर बैसाख फर्स्ट फर्स्ट में धरी जा और जे लास्ट तक तैयार है,
1: मतलब लगभग दो महीने।
2: हाँ, दो महीने करे।
1: एल जो तुम मैं कुछ निकालना लग रहा था ना, किनी काम छा बिनौर में?
2: इमें धान पहाड़ को ने जो ऊपर चांदिया, मतलब
1: वो क्यों है, क्यों है धान पहाड़?
2: वो बीच में घास हो एक प्रकार।

0: जो धान में आ जाए अलग से
1: अच्छा
0: जगह पहाड़ों को नहीं।
1: अच्छा मतलब जैसे धान अभी नोड़ में जो धान जम रही इन्हें बीच में कोई असल झाड़ छू जो धान लीजिए खराब हो उनको निकाम छो तुम
0: वो धान लीजिए खराब होने भाई और पहाड़ का ही जाओ
1: ये कैसी पहचान छो तुम पहचान के छू है
0: को अलग प्रकार को बीज हूँ धान हवे अलग हूँ और कई प्रकार हूँ मैं जम जाऊँ वो का ढूंढना पड़ा पहले तब भाई मैं सही हूँ लगाने
1: यह भी नॉर्ड में तुम जो धान भी बो रही कतु प्रकार धान बो रही में एक प्रकार बो रही या अलग अलग प्रकार बो रही
0: एक गढ़ में तो एक प्रकार बोनू पे
1: यो गढ़ में कोवाल धान बो रही तुम
0: मैं थापचिन होने धाना
1: थापचिन
0: हाँ धाना बीज
1: थापचिन वाल बीज भी नॉर्ड से हो अच्छा और दूसर भी नॉर्ड कोवाल धानक लग रही तुम
0: को चैना चू को लाल धान होने
1: यो बिनौड़ लीजिए बीज कहाँ मिली छा तुम
0: बीज तो फिलहाल हम घर हूँ हर साल अपना घर पे धनो बीज
1: घर में तैयार कर छा कती बाजार उजार बनी लेना
0: ना ना अब तो चलो लेकिन आयल तो फिलहाल हमारा अपन घर रखो छो
1: पूरा गर्मी पड़ रहा है सुख पड़ रहा है लेकिन ये बिनौर तुम्हारे खूब सही हो रहा है गिल हो रहा है मैं तो इमें पानी कहाँ पे लिछा तुम
0: यहाँ नहर छन गाड़े किनारे में नहर बड़ी हुई छन और पंप द्वारा जब ज्यादा पानी है पंप द्वारा करना
1: तो तुम इमें जो यो सिंचाई कर रहे हो पंप द्वारा कर नहर द्वारा कर रहे
0: हाँ ऐल तो फिलहाल नहर द्वारा करके वे जब
1: अच्छा
0: पानी हो जो पंप आवश्यकता पड़ जाए
1: ये जो बिनौर तुम तैयार करो इमें बुआई करना बखत की तैयारी करना पड़ी तुमको
0: पहले तो एक बानो फिर वादा बीज बोनो खाद वगैरह डालनो और मोह हो जो हो पहाड़ में ऊपर डालनो
1: बाजारे खाओ लड़ा अच्छा
0: हाँ किलोना डालनो
1: कोवाल नाम बताओ के पत्तो छु
0: यूरिया यूरिया डालना
1: बिनोड़ में किला डालो छ तुम यूरिया अगर नहीं डालो तो क्या हाल
0: नहीं हॉल ने खाद डालना पड़ो
1: नहीं हाल
0: हॉल तो सही लेकिन 6-8 हजार
1: तुम्हारे तो में ये सब बहुत गह गह रहे नहीं हो धान तो फिर इनको तुम अलग अलग कसी कर ला
0: सब एक एक करके बीज निकालना पड़ो तब रोपाई लग अलग अलग
1: तो जो फालतुओं को निकाल भी क्या कर सा फेंक दिया
0: ना तो कहेगा काम आ जा फिलहाल
1: दूसरा काम आ जा
0: दूसरा काम आ जा
1: इमें जो तुम बुआई कर सा तो कैसे कर सा बल्द द्वारा कर सा या कोई ट्रैक्टर वगैरह चलनी तुम वहाँ
0: हमारे वहाँ तो आई बल्द चलनी पे बल्द द्वारा बाहर कोई ट्रैक्टर डाले वहाँ
1: तो तुम्हारे गड़े में नहीं चलना ट्रैक्टर
0: हम तो फिलहाल हो जतनो
1: अच्छा ये बिनौड़ बीच में तुम लिया कोई दूसरी चीज बोरे ये क्या छो
0: ये का भाट को नहीं
1: ये किला बोरा बिनौड़ बीच में
0: भलो या बोले बोन जरूरी होगा
1: मतलब अगर ये नहीं बोला तो क्या हाल
0: के नहीं हो उसका बोन पड़ो एक बीज नहीं बोन दो बीज बोने द्वार बोने का
1: अच्छा मतलब एक का बीज नहीं बोन ये लीजिए बोरा तो भाटे के लिए बोआ कोई दूसरी चीज के लिए नहीं बोए
0: दूसरा चीज नहीं बोन भाटिया मांस वगैरह दो चीज बोन
1: बाद में जब ये भाट थोड़ा जाल फिर तुम्हें केकला
0: एका गोरबा से काम आ जाए
1: अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कतु नए जमीन छो
0: अच्छा हम नए नहीं चल रहे बिलक चलो करीब 10 बिलक होना
1: अच्छा मतलब ऐसी बताओ कतु हाउ जमीन छो तुम्हारे पास कतु दिन लागो को बहाड़ में
0: 2 दिन लगने
1: ये पूरा जो 10 बिलक जमीन तुम पास छो सबन में धान बोला तुम
0: हाँ कमड़ी धान बोलने कमड़ी मोडो हडो और फट मास गोत वगैरह
1: तो 10 बिलक जमीन में सब तलाव छो उपराव छो
0: थोड़ा बहुत 2-3 बिलो उपराव छो और बाकी तलाव
1: तलाव छो तलाव में सबन में धान बोला
0: हाँ एल तो रोपाई लागो सबन
1: तो कुछ पत्ते छो तुम कतुक धान हाजिल तुम्हार
0: हाँ हजानी 1500 बोरी करे
1: 1500 बोरी धान हाजिल क्या कच्छा तुम खुद घर में खनल जी धरचा बेच ले
0: कब तो 1000 घर ले जी खबर बेच ले देनो
1: तो क्या भाव बेची जानी
0: 12 रुपए पैसे 10 रुपए पैसे री सब
1: पैसे एक पैसे में कतु
0: 2 किलो
1: अच्छा आजकल जैसे पहाड़ में अक्सर हम सुनो ना कि जंगली जानवर नुकसान है जहाँ बानर छन सुंगर छन तुम वाले यस कोई दिक्कत छो
0: हाँ हम वाला दिक्कत छो बरा लग जा आलू खेती नष्ट है जहाँ धान वगैरह सब बरा बानर होनी आधु खेत तो बहुत गुरु बच्चा सब खा जाने तबाह कर जाने
1: तो इनको रोकना लीजिए क्या उपाय कर सकते तुम
0: भगवान का बाद नहीं सब शैणी मैस जो पकड़ पकड़ के बंद करनी फिर उन्हें जी व्यवस्था करनी घास वगैरह पानी हाँ सब देनी और जो जानवर उन्हें बड़ा वगैरह आप उतो ठूल जानवर से होगा मारना अलाउड नहीं है और हम कहीं नहीं कर सकते फिलहाल
1: अच्छा जैसे तुम बता ना कि जो आवारा जानवर से उनको तुम बात दी सका बात छा उन्हें जी बनर से यहाँ के
0: आए तो कहीं नहीं बढ़ रहा इसका बाद में कह कर जमीन में बात देने उसका फिर घा पात को और मैस देनी उनको हम उसका नहीं छोड़ सकना वाला जानवर छीन
1: काक जानवर होनी हो कहाँ होनी हो
0: पता ना कहाँ कहाँ पर छोड़ जानी लोग जना बेकार हैं जो दूध वगैरह और या बाड़ा काम जो उनका छोड़ जानी है
1: अच्छा
0: तह लीजिए उनका पाँव तो भैया कैसी मारी जाने
1: हाँ।
0: उनका बात रखनी है
1: तो एल अल्लाह हरी तुम्हें गढ़ में
0: हाँ अल्लाह एल खुदाई है गया वो मैं रोपाई लगे
1: कतो आल है तुम्हार
0: बहुत है 40 किलो का एक मार को नहीं हाना 20-25 मार
1: तो वो आलू की क्या कला तुम उनको बेचे छा या क्या कचा
0: हाँ थोड़ा बहुत बेचना थोड़ा बहुत आप खाना लीजिए साग सब्जी धन
1: कहाँ बेचे छा उनको
0: जो है गए पहाड़ पे ना घर पे
1: मतलब इपने बेचे छा कते बिहार नहीं बेचना

0: ठेकेदार लोग उनका बेचना
1: तो क्या भाव बेचनी
0: को 20 रुपए किलो को 25 रुपए किलो लेड़ में तो अमूल 45-50 रुपए किलो ली नहीं तो को 20 होना को 15 होना।
1: अच्छा एक चीज और बताओ पूरे परिवार का खर्च चलना लीजिए तुम्हारे पास आजू का काम यही खेत छो।
0: हाँ सिर्फ खेती छो पे और खेत में
1: मतलब पूरी यही खेती तुम आपको परिवार का खर्च चले सा।
0: हाँ यह खेती चलो न खाने पीने तो है ही जहाँ लेकिन साबुन वगैरह और चीजें लीजिए और मेहनत करना पड़ो खाने जी धान गेहूँ आल हाल हजानी लेकिन जो और आवश्यकता हूँ जैसा तेल साबुन वगैरह भी लीजिए और काम करना पड़ो मेहनत मजदूरी।
1: अच्छा एक चीज बताओ जैसे पहले वक्त खेती थी और यह वक्त खेती यू दिन खेती में तुमने क्या अंतर देखियो।
0: पहली वे होना चाहिए आप तो ज्यादा जंगली जानवर बरा बानर सब बहु गुरबा सब खा जानी है के फायदे ने आप कारण से जो कारण से वाले हिसाब रहा
1: तो यहाँ पे क्या वजह ज्यादा आ गई तुमको क्या लागो
0: बेहरे मैं इसलिए भी छोड़ दी उनका जंगल में आग वगैरह लग जाओ जंगल छोड़ भी घर में जानी तय वजह ले सकनी।
1: अच्छा ये बताओ खेती करना हमारे जी के लिए जरूरी छो
0: आप पेट पालन भी जरूरी छो हमारा और रोजगार किसी पहाड़ में ऐसा काम भाई हमारे खेती बाड़ी बेरोजगारी ज्यादा से यहाँ पढ़ी लिखी लोग खेती बाड़ी करनी अनपढ़ खेती बाड़ी करनी और के रोजगार है।
1: अच्छा तुम हम बातचीत करी हमारे का बात करना जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताल आप लोग सुन लागिया सोमेश्वर ब्लॉक ठाकुर जिला अल्मोड़ा के महिला काश्तकार पुष्पा बुरा दगा करी गई और क्षेत्र संकली भेंट वार्ता इन्हें दगा भेंट पड़ लागती रमेश मिंटा धन्यवाद। और दगड़ियों कार्यक्रम में आज एक हमारे काश्तकारों ने जी सलाह छू कि जैसा हम ढिंगरी मशरूम में बारे में बात करिए अपन आय के बढ़िया काम कर सकनी तो जैसे एक काम छो मछ पालन मछ जो हमारे यहाँ ताज मछली उन्हें बहुत मांग है क्योंकि मछ हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत मानी जा रही है और जो मछ खान जानी उन्हें लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में हम देखने की मैदानी क्षेत्र में मछ ज्ञान पड़नी और उनको बर्फ़ और शिल्लू में धर भी लानी तो कई बार क्यों कि वो मछ उतु भल और पौष्टिक और ताज नहीं हों। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र में मछ पालन बारे में सोची जाओ खास तौर पर मछ पालन हमारे यहाँ पॉलीटैंक बने पर करी जा सकूँ या जो वो इलाके हैं जिन्हें गाड़ा किनार बसी हुए घर वाले लोग हैं वहाँ एक प्रकार बगती हुई पानी मिले या बहते हुए जल मिले मछ पालन काम करी जा सकूँ तो कैसे करी जा सकूँ क्या तकनीक हैं या बारे में अगर हमें कोई काश्तकार सोचना चाहनी तो उन विभाग में चाबी पत्र कर सकनी और अपने आय के बढ़ना लीजिए मछ पालन काम कर सकनी। तो दगड़ी यथा आज एक सलाह थी और अब कार्यक्रम आपको सुनानू यह गीत

सुनता यूँ थी दीवान कनवाल और रेखा दिश के दिनों सर में यज्ञ आप लोग सुना किया यकदगढ़ हमर आज ग्राम जगत कार्यक्रम एटी के संपन्न हूँ भो फिर भी गए आदमी आज नमस्कार थोड़ी देर में आप लोग सुनला हमारे देहरादून केंद्रीय कुमाऊनी में उत्तराखंड समाचार।

शाम के 7:30 होने के हैं। कुछ ही देर बाद आप हमारे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से उत्तराखंड के कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी मां प्रादेशिक समाचार दगड़ी में कुसुम लता पिलखवाल। प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जबे गणना प्रपत्रों का वितरण और सत्यापन का काम शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिहरी क्षेत्र में गस्ती बैंडक नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी बाट में चल नई सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कामों का निरीक्षण करो। देहरादून जिला कालसी विकास खंड में सैनिक ओरबटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण सफल मॉडल बनबेर उभरी और हरिद्वार जिल में कृत्रिम गर्भाधानक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करण वाल 12 कार्यकर्ताओं के सम्मानित करी गो। अब समाचार विस्तार। प्रदेश में आज बटी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत बूथ लेवल अधिकारियों BLO द्वारा घर घर जबे गणना प्रपत्रों वितरण और सत्यापन का काम शुरू है गो। यह एक औपचारिक शुरुआत लोक भवन नैनीताल में है, जहां ERO द्वारा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के गणना फॉर्म सौंपी गई। वे सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तमल गणना फॉर्म सौंपी। SIR के तहत 7 जुलाई ताले BLO प्रत्येक मतदान क्षेत्र में घर घर जबे मतदाताओं दगर संपर्क करल और गणना प्रपत्र वितरित करल। यो दौरान मतदाता सूची में नई पात्र मतदाताओं के शामिल करण, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटान और प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करी जाल। यो चरण में मतदाताओं ने कुल प्रकार कागजात नीली जाल। वह पौड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरियाल बता SIR उद्देश्य निर्वाचक नामावली के शुद्ध त्रुटि रहित और नवीनतम बनान छो, ताकि हर एक योग्य नागरिक अपु मताधिकार प्रयोग कर सको।
1: आज 8 जून से लेकर 7 जुलाई तक हमारे जो BLOs हैं वो घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म्स का भी वितरण करेंगे और इसको कलेक्ट भी करेंगे। और मेरा सभी लोगों से निवेदन रहेगा, BLO से भी निवेदन रहेगा कि इसको पूरी सतर्कता से इस काम को करें और लोगों से भी अपील रहेगी कि वो BLOs का हर चीज़ में सहयोग करें। और इसके साथ में ही हम लोग लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंटली होना है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोग हर मंडे को यहाँ पर बैठक करते हैं और तहसीलों में हर ट्यूजडे को ये बैठक की जाती है।
0: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिहरी क्षेत्र में पिछले साल आपदा क्षतिग्रस्त चार धाम यात्रा बाटक गस्ती बैंडक नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी बाट में चल नई सुधार व पुनर्स्थापना कामों का निरीक्षण करो। उन्होंने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकारियों ने कामों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्माण कामों की गुणवत्ता का जायजा ली। कैबिनेट मंत्री अधिकारियों का मार्गदर्शन करो कि चार धाम यात्रा बाढ़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण छो, यलिजी सभी कामों के निर्धारित समय सीमा में उच्च गुणवत्ता दगर जल्दी पूरी करी जाओ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की बहाली और मजबूती के लिए लगातार काम करने। उन्होंने अधिकारियों के निर्देश दिए कि बरसात तक मौसम के देखते हुए संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखी जाओ और सुरक्षा उपायों के प्राथमिकता दी जाओ, ताकि यातायात मार्ग पर कोई प्रकार की बाधा पैदा नहीं हो। मुख्यमंत्री सचिव डॉक्टर SN पांडेल आज पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों, नागरिक समाज और जिला प्रशासनक दगड़ संवाद करो। यो दौरान उन्होंने जिला विकास, आधारभूत सुविधाओं सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य

0: सड़क और दोहर जनहित बटी जुड़ी विषयों पर सुझाव ली। डॉक्टर पांडेल को कि राज्य सरकार का उद्देश्य विकास कामों की वास्तविक स्थिति स्थलीय स्तर पर जांच पड़ताल करते हुए जन सामान्य समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना छू।
1: आज जो है विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिससे कि जन सामान्य की क्या समस्याएं हैं, पब्लिक काज के क्या इशूज हैं और किस प्रकार से विभाग कार्य कर रहा है और शासन स्तर की क्या इशूज हैं जिससे कि जनपदों में कार्य करने में कठिनाइयां हो रही हैं, उसको समझने के बाद और जो शासन स्तर से उसको दूर करने का प्रयास है वो उसी कड़ी में हम लोग कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है सभी विभागों को कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, संतुष्टिकरण, उस पर सारे विभाग के अधिकारी कार्य करें।
0: उन्होंने कहा कि शासन जनता के सुझावों और अपेक्षाओं के गंभीरता लिबेर काम करने और प्राप्त सुझावों के नीति निर्माण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में समाहित ले करी जाए।
2: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रहा। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: देहरादून जिलमा कालसे विकास खंडक हरिपुर गोमा सैनिक ओर बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण सफल मॉडल बनबीर उभरी। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना रीपक तहत सितंबर 2024 में स्थापित यूनिटल सैकड़ों सैणियों के आर्थिक रूपल मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। विकास महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशन ओर बटी स्थापित यह यूनिट में सरसों तेलक उत्पादन करी जानो। रीपक जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ताल बता कि यह यूनिटल हर महीने करीब 70,000 रुपये आय होने, जबकि स्थापना के बाद से अब ताले 25 लाख रुपये मूल्यक सरसों तेल बेच हेलो। ये के अलावा 4/5 श्रेणियों के प्रत्यक्ष रोजगार ले मिल रो। उन्होंने कहा कि यह यूनिट ग्रामीण श्रेणियों के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण छू।
3: कालसी ब्लॉक की CLF है हमारी विकास महिला, उसको CBO लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपये तक का सेल्स उनका प्रतिमाह हो रहा है और इसमें CLF से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं। मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम कर रही और इस तरह से उनका आय में वृद्धि हो रही है। इसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट निर्माण हो रहे हैं हमारे हॉट और कोल्ड प्रेस, इसमें इनकी सेल्स है, HOH में जा रहा है, हमारा एक नीचे आउटलेट खुला है वहां जा रहा है, लोकल लोगों को भी केटर हो रहा है, प्लस हमारा ऑनलाइन मार्केटिंग भी इसकी की जा रही है।
0: समूह सदस्य रीना चौहानक कुण चुकी आज सैनी उत्पादन बटी लिबेर विपणन ताले जिम्मेदारी संभाल नहीं और आर्थिक रूपल सशक्त बन नहीं।
4: विकास महिला क्लस्टर का NRLM के द्वारा गठन किया गया जिसमें कि 120 समूह है, 764 महिलाएं हैं और तत्पश्चात विकास महिला CLF का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई जिसके द्वारा के सरसों तेल यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जिला प्रशासन का, NRLM का और रीप का, जिन्होंने की हमार को इस काम करने का अवसर प्राप्त हुआ।
0: हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्रल जिलमा कृत्रिम गर्भाधानक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 12 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के आज सम्मानित करो। यह अवसर पर उन्होंने सम्मानित कार्यकर्ताओं के बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधनक गुणवत्ता सुधारण में उनर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण छो। उन्होंने विश्वास प्रकट करो कि नई तकनीक और स्वीकृत बजट के तालमेलल हरिद्वार जिला पशुपालन क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करल। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्डक मुख्य अधिकारी डॉक्टर RS नेगिल बता कि जिल मां पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के व्यापक स्तर पर लागू करी जाए। उन्होंने कहा कि यह तकनीकल उच्च नस्ल और सकर उत्पादकता वाले पशुओं का विकास संभव होल, जैसे पशुपालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होल। पौड़ी जिल्मा भू कानूनक प्रभावी अनुपालनक लीजी प्रशासनक ओर बटी लगातार कार्रवाई करी जाने यो क्रम में धुमाकूट तहसीलक गांव लुईठा मल्लामा भू कानूनक उल्लंघन बटी जुड़ी एक प्रकरण में जिला प्रशासन लगभग 27 नाली भूमि के राज्य सरकार में शामिल कर बेद उमे कब्जा लिहेलो। धुमाकोटक उपजिलाधिकारी बता कि संबंधित प्रकरण में बाहरी मनखियों द्वारा निर्धारित सीमा हबीर सकर भूमि खरीदनक मामला सामने आछे। मामलक जांच राजस्व अभिलेखों परीक्षण और जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करी गई। आखिर में मुख्य समाचार आई प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रमक तहत बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर जबे गणना प्रपत्रों के वितरण और सत्यापन कार्य शुरू। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी टिहरी जिल में गस्ती बैंडक नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग और कैम्पटी टिहरी बाटमार चल नई सड़क सुधार और पुनर्स्थापना कामों का निरीक्षण करो। देहरादून जिला कालसी विकास खंड में सैनियों ओर बटी संचालित सरसों तेल यूनिट ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरणक सफल मॉडल बनबीर उभरी और हरिद्वार जिल में कृत्रिम गर्भाधानक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करण वल 12 कार्यकर्ताओं के सम्मानित करी गो। यो के दगड़े ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों यह अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
5: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:41 हुए हैं। अब समय हो चुका है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम हो गए आपके फिल्म के साथ। गीत का आवाज दी है अलका याग्निक ने, बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आइए अब सुनते हैं तौसीफ़ अख्तर की आवाज़ में तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का ये गीत। संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है और गीत के बोल सभी नलखे हैं।

प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजने को है अगला कार्यक्रम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: को आज की चाय तेरी तरफ से।
1: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
3: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ ये विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
4: थैंक यू।
3: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन पीटीआई के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
5: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूँ जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहाँ आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहाँ मुझे इसके साथ काम करते हुए 45 बरस हो चुके हैं। यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है, इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है, लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से हम आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्विअर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी, और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है, शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बने। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
0: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर 3 कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है, मछुआरों को देनी है, सुनामी का हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहाँ आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया आकाशवाणी ने, एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है, और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर, भारत सरकार, राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है, और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय है, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर TV चैनल्स, विजुअल माध्यम जो हैं उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स हैं वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने, यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना है, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे, क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है, यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का, तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
5: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र हैं और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र हैं जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ जब ये पीटीआई के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ाया भी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने बरसों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
4: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे। तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्रलोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा। मनोरंजन का साथ, महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार, जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
5: रामानुज प्रसाद सिंह,
4: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पमेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया, इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का। और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा CM डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
5: अच्छा।
4: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा सर हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सैटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप उसने कहा क्या फॉलो अप आपने कहा था गोवा सीएम डेड उसका फॉलो अप क्या है तब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया
5: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था उस समय भी ऐसा होता था पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया इसको ये कर दिया जबकि हमारी सेना सीधी लाहौर तक पहुंच गई थी तो तब आकाशवाणी ने कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है इसका जमाना चला गया तभी 85 के समय भी ऐसा लगा लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए कम्युनिटी चैनल शुरू किए और उसके बाद फिर ऐसे लग रहा है शायद फिर पीछे हो रहा है लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है उसका सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल रेडियो के चैनल से चाहे वो टीवी के चैनल से उसी को आगे प्रसारित करते हैं तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूं और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं इन्होंने पत्रकारिता में तो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही है वो भी है साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो
6: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है
5: हमारे आकाशवाणी में आज वो स्टूडियो है
6: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं वही बापू स्टूडियो जहाँ महात्मा गांधी आए
5: जी।
6: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हैं आकाशवाणी ने एक और काम किया उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया हमें संवेदना दी हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है एक और बड़ी रोचक बात लगती है सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थीं रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली उसने ये बताया कि हम

0: जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो, या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो। जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया, और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है, और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़ी शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है, और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न का टोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो, या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ। नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे। लोगों से भीख मांगते थे, एक तरह से हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा, इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया, जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती हैं उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवावस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे, इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं।
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन। उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशंस या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं, और इन कार्यक्रमों को हर छात्र, युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं। तो हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे, हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था। हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो अली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों जी हो, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा हो,
2: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद, और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं। गीत संगीत तो सुनते ही थे, और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले। हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था, और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980-82-83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ, और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे, उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। तो वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की, तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से, अपना जो छात्राएं हैं उनसे खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया, लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मैट्रिक रिकॉर्ड हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था, लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते थे। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
3: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया, विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती, बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें, उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर, हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था, क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वार कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है, लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने

0: उन एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा, उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में आज इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, लेकिन आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में हैं, पंडित रविशंकर उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्यता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह के आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता तो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
3: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर परिवारिक बारी को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय तंजन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में?
1: जी टंडन साहब
0: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है।

0: जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है। सरकार के पक्ष का भी नहीं है और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है। मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
2: और कोई सवाल पूछा चाहे जरा बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
2: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
3: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए?
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है, वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
2: सखी संगीत चल रहा है। महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर के चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो बैंक के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कर रहे। वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी, मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी को बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
0: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं। तो देखिए, वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही। और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामायिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ। इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
2: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासकर समाचारों के प्रति।
0: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है।
2: बिल्कुल।
0: और जितने लोग भी कार से सफर करते हैं,
2: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो
0: तो
2: रेडियो,
0: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं।
2: बिल्कुल।
3: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
2: अच्छा।
3: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इसमें।
2: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और आप भी आइए।
5: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
6: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और PhD रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स है उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
2: बड़े-बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
6: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
2: बिल्कुल, आपकी बात सही है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी का भी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बन में कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
7: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
8: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा।

0: वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
3: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
4: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक

आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

पांच पांच लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को दो दो लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को एक एक लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। ASCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या ASCAT.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।

0: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
1: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
0: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
2: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
4: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
3: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म हंगामा के इस गीत के साथ। गीत का आवाज दी है बाबुल सुप्रियो ने। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

0: फिल्म चलते चलते के इस गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है।
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था। केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुँचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। तो हमें किसानों को समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूँगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ में लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो।
0: जी, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम जी, प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार, नमस्कार जी।
2: सर जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलप्रीत दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रवि, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मजीत जी, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं। एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्सिडी होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है। दूसरी बात यह है कि हमारा खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं। और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है। और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ ज़मीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं। और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
0: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है। लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पर किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस्ड कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
0: डॉक्टर, आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश
0: जी,
4: राकेश बात कर रहा हूँ, कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या, किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज़्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
0: डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो राकेश जी जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई। तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है, बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है और इसकी कमी बहुत ज़्यादा है। किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा तो
0: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर
3: बहुत जरूरी है,
0: किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं योगेश झांगड़े जी।
5: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी
0: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर
2: योगेश जी, जो भी हमारे फसल अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक उषा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से कीट को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपने खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो जी अनिल जी।
3: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुँचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
2: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूँगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उस केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हों और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों से कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
4: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
4: सर मैं ये जानना चाहता हूँ हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए?
1: जी डॉक्टर मीना।
5: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है, इवन पेड़ और बिल्डिंग, कुएं, जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है

0: यहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है, और मिट्टी की गहराई जैसे जो आपकी सीजनल फसलें जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है, तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
0: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मैन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में डॉक्टर?
2: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है दलहनी फसल काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फसल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना आदि का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉयल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितने भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही है और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्सिडी हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए साथ में उसका गैस का उपयोग भी करें तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से मैं गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीज़ों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद हैं जिनके माध्यम से दे सकते हैं या कुछ जैविक ऐसी भी चीज़ें हैं जो फफूंद नाशक जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सुडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को जो नुकसान को भी कम कर पाएँ। एक

0: हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना है।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे यहाँ ब्लैक समेट एक गेहूँ में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है। बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको प्रौद को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहाँ पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनके अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है, और जैसे छत्तीसगढ़ में है या एमपी में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: वहाँ पे ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
0: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूँगा कि हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहाँ से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989, तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 01125841670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक जो भी हमारे एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ, खासकर अगर मिसाल का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम

0: उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी, हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
2: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के, ये भी
1: जी,
2: एक
1: जी राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
2: जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल, तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है, और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पे कोई लोन मिलना है?
1: जी डॉक्टर मीना।
0: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारी जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में सवाल जानना चाहूंगी कि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो, एक्सेस हो रहा है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है, जब हम उसको सही, हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है, और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है, तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी, और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान के उनके माध्यम से मिलकर उनको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होके एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझे, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
0: नमस्कार।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती एप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। अब समय हो चुका है सुगम संगीत का। कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं चंदन दास की गाइस नगमा के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply. Turn summers into inspiring getaways. Step into a season of refined drives with exclusive benefits on your favorite Nexa car.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: Enjoy amazing benefits up to ₹25,000. Offer valid till 30th June.
3: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today. Hurry! Offers for a limited time only. TNC apply.
5: सुगम संगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में आइए आप सुनते हैं मेहदी हसन को।

गुलाम अली के गाय इसी नगमे के साथ हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कटी पतंग के गीत के साथ। बोल आनंद बख्श के हैं और संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में लीजिए अब सुनिए दो रास्ते फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ों में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

से शादी करोगी फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज़ों में। संगीत दिया है अनु मलिक ने और बोल समीर के हैं।

फिल्म संगीत कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से सुन रहे हैं। अगली प्रस्तुति में आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में दिल मांगे मोर फिल्म का ये गीत। समीर के बोल हैं और संगीत हिमेश रेशमिया का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के समापन में आइए अब सुनते हैं फिल्म हंगामा से ये गीत अभिजीत और अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज़ों में। बोल समीर के हैं और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

हंगामा फिल्म के संगीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। अपने रेडियो दोस्त दीप प्रकाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है अब हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
3: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 और 20 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन और अंतिम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के साथ कल प्रातः 5:53 पर एक बार पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 और 20 सेकंड्स हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन और अंतिम सभा के प्रसारण संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के साथ कल प्रातः 5:53 पर एक बार पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।